मीडियम फीव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 25 जुलाई 2026। सवेरे के ठीक 5:56 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं मंगल ध्वनि के साथ।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। NTA ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। NTA ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। NTA ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत

तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: performance by lifting 190 kg in a second attempt, earning 130.9 points and securing a place on the podium. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 6:10 हुई है। कार्यक्रम आप सुने वंदना।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने अनूप जलोटा की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6 बजकर 45 मिनट हुए हैं। कार्यक्रम सुने चिंतन।
1: सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ हम बातों में ऊपर के लिए करने का नहीं है, जो हमारे अंतरतम गहराइयों में जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, उसके अंदर में बदलाव लाना। आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे हमारा व्यवहार, चाहे हमारा रिश्ते, जो कुछ भी हमारा साथ में जो कुछ भी चल रहा है, उसका मुख्य रूप से कारण हम खुद स्वयं हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड। ये एटीट्यूड को अगर हमको समझना है, तो जब हम मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं, तब हमारे अंदर में जो विचारों का श्रृंखला चलता है, विचारों का श्रृंखला किस आधार पर है, इनको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ये किसी दूसरे को बताने के लिए हैं और दूसरे के साथ में व्यवहार करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक आर्टिफिशियल हो गया। नहीं, हमारा जो विचारों का श्रृंखला है किस तरह चलता है, हम अकेले में उस स्तर पर जहाँ पर विचार शुरू हो रहे हैं और वो विचार किस किस्म के हैं, इनको हमें पहचानना होगा। इस तरह पहचान करके अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर कोई शक शक शक नज़र से दूसरे को देखता है और कुछ खो दे रहा हूँ ऐसा सोचता है, और हमेशा दूसरे से पाने के लिए और कुछ भी दूसरे को ना देने का एक व्यवहार बहुत बड़ा नकारात्मक सोच बन गया। और मोर देन 50-60% जो घरेलू महिलाएं हैं और उनके अंदर में डिप्रेशन पाया जा रहा है, इन सब का कारण नकारात्मक सोच है। क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह की हमारा सोच ऐसा नेगेटिव अप्रोच में बढ़ता जा रहा है। अगले पल में क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अगर हम सोचते हैं तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ना हो ऐसा नहीं, जो चाहिए वो हमको चाहत उस पे प्रति बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, मैं लेट दफ्तर नहीं पहुँचूँ, इसका मतलब डेफिनेटली मैं दफ्तर लेट ही पहुँचूँगा। फिर हमको कैसे बदलना होगा इसको, मैं दफ्तर टाइम पे पहुँच गया, मैं दफ्तर में पहुँच गया और मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस तरह सकारात्मक सोच बदले। तो ये मुख्य रूप से ध्यान के माध्यम से संभव है। इस तरह हम अपना मेंटल एटीट्यूड को हमारे प्रति और परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जो हमारा देश के राष्ट्र के प्रति ये जो सोच है, हर कोई व्यक्ति दूसरे को दोष देने में लगा हुआ है, सिस्टम ठीक नहीं है, बच्चे बिगड़ गए, माहौल बिगड़ गया, ये सब दूसरे को दोष ठहराना बहुत आम बात हो गई। लेकिन हकीकत में बिगड़ा हुआ कोई दूसरा नहीं है, हमारे अंदर में ही है। ये कब पहचानत में आएगा, जब मैं अपने आप को देखूंगा और मेरा विचारधारा को। इसके लिए मौन बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम कुछ देर के लिए, 24 घंटे में 5 मिनट के लिए ही सही, आप जो ध्यान का प्रक्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय में अपना विचार श्रृंखला को आप देखें और उसके बारे में सोचें। अगर मेरा विचार श्रृंखला अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में बदलना है, और तब हमारा जीवन बदलेगा और समाज बदलेगा, देश।
0: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए अब जाने कार्यक्रम विवरण के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेती है नमस्ते। इसमें जानकारी आप लेंगे कुष्मांड कुल की सब्जियों की देखभाल और साथ ही हम सुनेंगे लोक भजन। मानस गान भाग संख्या 315 आप सुनेंगे 7:20 पर। सुप्रभात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे भारत का गौरवशाली अतीत, साहित्य और समाज और सुसंगति। 8:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। 9:10 से कार्यक्रम आप सुनेंगे पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी एपिसोड 34 आप सुनेंगे। हमारे दिल्ली केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम।

सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम, 11 बजे भी फिल्म संगीत आप सुनेंगे लगातार। अनुरोध गीत, फरमाइशी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:05 पर। सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। खेत खलियान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें जानकारी आप लेंगे पशुओं में टीकाकरण, उन्नत पशुपालन विधियाँ। दोपहर 1:05 पर सुनेंगे महिला जगत, इसमें चर्चा के विषय रहेंगे पद्मश्री सम्मानित सुश्री दीपिका रेड्डी, महीने की शुरुआत और बचत का प्रबंधन, दादी नानी के अनुभव और उनकी सीख, और आम के विभिन्न प्रकार। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे।

युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5 बजे। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे राजस्थान के प्रमुख संत, भारत की नदियां, नशा जीवन का नाश, राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारी और आज का इतिहास इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। 6:05 पर सुनेंगे सरायकी कार्यक्रम। शाम 7 बजे सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। इसमें आप जानकारी लेंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं, बागवानी में सामयिक कार्य, कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सावधानियां और साथ ही आप जान पाएंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी। 7:45 पर सुनेंगे फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम और रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे संसद समीक्षा जो कि दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। 8:15 पर सुनेंगे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं। 9:15 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। ये थे हमारे कुछ खास कार्यक्रम, उनके समय के बारे में जानकारी।

मैंने कहा कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामेह को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious

0: व आँख खातर चोखी रहे। इनकी खेती गर्मी और वर्षा ऋतु दोनों में करी जा सके। कद्दूकुल की प्रमुख सब्जियां जी आपने बांगी बात करा, तरबूज है, खरबूजो, कद्दू, तोरई, लौकी, पेठो, ककड़ी, टिंडा, खीरा, करेला ए मुख्य रूप है। आगे अच्छी उन्नत किस्मा की बात करा जी, लौकी की बात करा, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी, पूसा नवीन, अर्का बहार, पूसा मेघदूत ए लौकी की अच्छी उन्नत किस्म है। तरबूज की बात करा तो शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, अर्का ज्योति, मधु और सिलेक्शन एक। कद्दू की बात करा, पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। खरबूजे की उन्नत किस्मा की बात करा, दुर्गापुरा मधुर, पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, अर्का जीत, हरा मधु और पूसा मधुरस। चिकनी तुरई की बात करा, गलगल तोरी जो कहने पूसा चिकनी के नाम से भी जानो जाए, धारीदार तुरई, पूसा नस्तार, खीरे की अच्छी उन्नत किस्मा, बालम खीरा, पाइन सेट, पूसा संयोग। करेले की बात करा, कोयमटूर लौंग, पूसा दो मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, हर पूसा विशेष। यह अपने कुष्माण्ड कुल की जो कि सब्जियां हैं बाकी अच्छी उन्नत किस्म है। टिंडे की बात करें तो बीकानेरी ग्रीन, दिल पसंद, पंजाब 48, हिसार सिलेक्शन एक, ककड़ी लखनऊ अगेती। और बुआई के टाइम की बात करा तो तरबूज है, खरबूजो है, ककड़ी है फरवरी मार्च में, और तुरई, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, टिंडा आंगी भी बुआई आपा इन टाइम जकी कर सका फरवरी मार्च में, और आंगी वर्षाकालीन में भी आपा बिजाई जकी कर सका। बीजा ने बीजने से पहला भूमि जनित बीमारियों की रोकथाम खातर अपन ने 22-2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाई खाद और उर्वरक की बात करा, गोबर की खाद 40-50 क्विंटल प्रति बीघे तई, नत्रजन 20-25 किलोग्राम प्रति बीघे तई, फास्फोरस 10 किलोग्राम प्रति बीघे तई और पोटास 10 किलोग्राम प्रति बीघे तई। देसी खाद पोटास और फास्फोरस आंगी पूरी मात्रा, नत्रजन की 1/3 मात्रा 7.5 किलो नत्रजन बुआई के टाइम भूमि में मिला के दे देनी चाहिए। शेष बचड़ी नत्रजन की मात्रा 2 बार छिड़काव के रूप में पहली बार बुआई गए 25-30 दिन के बाद में और दूसरी फूल आने के टाइम में दे देनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करा, लौकी, कद्दू, करेला, तरबूज, तुरई, टिंडा अंग बीज 1 किलो ले गए 1.25 किलो प्रति बीघा की दर से, खरबूजे खीरा और ककड़ी को बीज है देखो 0.5 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से अपने बीजना चाहिए। बुआई के टाइम की बात करा तो बुआई को टाइमिंग फरवरी और मार्च में, और कद्दूकुल की सब्जियां की बुआई नालियां में करनी चाहिए और एक स्थान पर 2 या 3 जगह बीज लगाना चाहिए। अंकुरण के बाद जो स्वस्थ बीज अभी ने रख लेना चाहिए, बाकी ने उखाड़ के रख काट देना चाहिए। सीधे खेत में बीज ने कारण बिजाई की बुआई से पहले 24 घंटे पानी में बीज ने भिगो कर टाट में बांध के अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। बिंगे बाद ही बीजा ने बीजना चाहिए जो क्योंकि अंकुरण की प्रक्रिया जो कि वह बहुत ही तेजी से हो। तो इस हिसाब आप ने कद्दूकुल की सब्जियां बीजते टाइम जितने भी आप सावधानी में रखनी चाहिए, और बात जब भी आप बीजा तो नालियों में बीजनी चाहिए। नालियों की जी चौड़ाई है वह 2 मीटर लेके 3 मीटर तक होनी चाहिए। बीज बीज की दूरी भी मैं 2.25 फुट लेके और 3 फुट तक होनी चाहिए। तो जब आप मैं जो को पूरा लाभ है जो को ले सकांगा, जटे भी आपने अच्छो स्वस्थ बीज है वो उग जाए तो वो रखना चाहिए, बाकी बीज आपने काट देना चाहिए। और जितना भी अच्छा ही बेल वाली सब्जियां में आप वैज्ञानिक ढंग ध्यान रखांगा, टाइम टाइम सर आप खेत की देखभाल करांगा तो जी मैं हरी बीमारी कीड़ो कांटो या घास कूटलो है बिंग तुरता फुरता पर निगह करांगा, निकालता रहांगा, बिंग रोकथाम करांगा। जब आप लाभ है जो कोई इशू ज़्यादा ले सकांगा तो अपन जद भी ये साग सब्जी वाली फसलें बीजनी हुए तो विशेष तौर है बड़ी नाजुक वगैरह पर अपन सावधानी से ही काम करना चाहिए। जब आप इशू पूरा लाभ है जो को ले सकांगा पढ़ूँ। अब चलूँ, राम राम साह, राम राम।
1: कुष्माण्ड कुल की सब्जियों की देखभाल, अभी अपनी जानकारी ली कार्यक्रम खेती रहा वास्ते में। आइए अब सुने लोक भजन।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे खेती रमस्ते, यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 हुए कार्यक्रम आप सुने मानस गान भाग संख्या 315।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाद समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूढ़, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को ये वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भौहों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाही, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। सवेरे की 7:30 हुए। कार्यक्रम आप सुने सुप्रभात।

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, बात करें भारत का गौरवशाली अतीत। भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा इतिहास बड़ा ही गौरवमय रहा है। जो विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान और प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है, यह देश सिंधु घाटी सभ्यता, शून्य के आविष्कार और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों की भूमि है हमारा भारत। तक्षशिला और नालंदा दुनिया भर में से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे। गुरुकुल परंपरा समाज में उच्च संस्कार और शिक्षा दी जाती थी। और अनेक विषयों का विस्तार हमारे यहाँ हुआ। गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद का प्रसार। शून्य की खोज कि अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने दुनिया को गणना दी थी। चिकित्सा की बात करते हैं तो सुश्रुत और चरक के शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की नींव रखी गई थी। खगोल विज्ञान की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के गोल होने और सूर्य वर्ष की गणना प्राचीन काल में हुई। और श्रोताओं, बात करें कला और संस्कृति और साम्राज्य की तो मौर्य और गुप्त वंश के दौरान देश का विस्तार और समृद्धि चरम पर थी। वहीं साहित्य की हम बात करें तो कालिदास और वेद उपनिषदों की रचना ने मानवीय मूल्यों को गढ़ा है। अध्यात्म की बात करें तो शांति, योग, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश पूरी दुनिया को भारत ने दिया। बड़ा ही गौरवशाली इतिहास हमारे भारतवर्ष का रहा है और आज भी पूरे विश्व में मान्यता है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और विविधता का एक अनूठा संगम है जो विश्व को सबसे प्राचीन और निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से एक माना जाता है। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल और दर्शन है, गणित और विज्ञान है और हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय और शिक्षा, कला, संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम की अखंडता जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा की। इसके बाद 20वीं सदी में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में अहिंसक क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की। तो बड़ा ही गौरवमय हमारे भारत का इतिहास है और आज भी पूरे विश्व में हमें माना जाता है। बात हम और भी करेंगे, आइए सुने ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता अंतराल के बाद स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आपने गीत सुना, जागृति फिल्म से हमने लिया था और इसे गाया था प्रदीप और साथियों ने। गीतकार प्रदीप थे और संगीत गुलाम हैदर का था। आइए बात करें साहित्य और समाज के। श्रोताओं, साहित्य और समाज का संबंध शरीर और प्राण जैसा अटूट है। जहाँ समाज साहित्य को जन्म देता है और विषय सामग्री देता है, वहीं साहित्य समाज का दर्पण बनकर उसे नई दिशा और चेतना प्रदान करता है। समाज का दर्पण अगर हम बात करें तो साहित्य में समाज के सुख दुख, रीति रिवाज और स्थितियाँ साफ झलकती हैं। अच्छा साहित्य लोगों में अच्छे विचार जगाकर समाज की बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा देता है। साहित्य के माध्यम से ही हमें अपने इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलती है। श्रोताओं, साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का प्रतिबिंब है, समाज का मार्गदर्शक है और समाज का लेखा जोखा है। किसी भी राष्ट्र या सभ्यता की जानकारी उसके साहित्य से प्राप्त होती है। साहित्य लोक जीवन का अभिन्न अंग है। और ऐसे कई साहित्यकार भी हमारे भारत में हुए हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, जो कि हिंदी के राष्ट्रकवि रहे हैं, और भी

बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने भारत की महिमा मंडल महिमा की है, और साहित्य के सर्वोत्कृष्ट जो भी हमारे साहित्यकार रहे हैं उन्होंने बड़ा ही साहित्य में इतनी सारी विशेषताओं को डाला है कि हम उन्हें पढ़कर सीख सकते हैं हमारे समाज के बारे में, कैसे हम आचार विचार रखें। साहित्य हमें दुनिया को समझने और दूसरों को बेहतर ढंग से जानने में भी मदद करता है, और साहित्यिक रचनाएं आत्मा और विभिन्न दुनिया के द्वारा हमें बताती है कि क्या हमें दुनिया में किस प्रकार से आचार और व्यवहार करना है। अच्छे साहित्य हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें बुद्धि विवेक और जो भी समाज के या विकास की हम बात करें, तो अगर हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं तो उनकी अनूठी संस्कृतियाँ जो भी हमारे देश की हैं वो हमें जानने को मिलती हैं। श्रोताओं, साहित्य को मुख्य रूप से पांच प्रमुख विधाओं यानी प्रकारों से विभाजित किया जाता है, जिसमें कविता, गद्य, नाटक, गैर कथा और लोक कथा। इन सभी में अलग अलग विशेषताओं को लेकर बात की गई है। कविता में अलग है, गद्य जो हमारा है वो अलग है, नाटक का अलग है। संदेश एक ही है कि समाज में किस प्रकार से हमारे समाज में रहा जाए, कैसे आचार विचार किया जाए, और संस्कार हमें कैसे प्राप्त हों, और ऐसे संस्कार जो कि हमें बताते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार से किसी व्यक्तित्व का विकास हमें भी करना है और जो हमारे आसपास के लोग रहने वाले हैं उनका भी हमें करना चाहिए। वो तभी होगा जब हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे और संस्कार हमारे अच्छे होंगे। बात हम और भी करेंगे, आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम धुंध, और इसे गाया था महेंद्र कपूर ने। इसकी धुन तैयार की थी सबीर ने और संगीत रवि का था। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुप्रभात कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए बात करें सुसंगति की, यानी कि गुड कंपनी। इसके अर्थ अगर हम बात करें तो अच्छी संगति या विचारों तथ्यों के आपस में सही जुड़ाव से होता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों से हम बात कर सकते हैं कि नैतिक और व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ अच्छी सोहबत, सज्जनों का साथ या सत्संग। सत्संग और कुसंग, ये दो प्रवृत्तियां हैं। अच्छी संगति व्यक्ति के चरित्र और विकास को सकारात्मकता रूप से प्रभावित करती है, और कुसंगति हमें गलत मार्ग की ओर ले जाती है। साहित्य और भाषा की अगर हम बात करें तो किसी लेख, भाषण या तर्क में सुसंगति होने का अर्थ है कि उसके सभी वाक्य या हिस्से आपस में तार्किक रूप से जुड़े हों और एक ही दिशा में स्पष्ट अर्थ प्रकट कर रहे हों। वहीं दर्शन और ज्ञान की अगर हम बात करें तो ज्ञान मीमांसा में सुसंगति का सिद्धांत यह मानता है कि कोई कथन या विचार तभी सत्य होता है जब वह अन्य मान्य विचारों के साथ बिना किसी विरोधाभास के सटीक रूप से मेल खाता हो। श्रोताओं, सुसंगति क्या है? किसी भी चीज जैसे कि तर्क के आपस में जुड़े होने के तरीके को दर्शाती है। यदि किसी चीज में सुसंगति है तो उसके भाग आपस में अच्छी तरह से जुड़े होते हैं और एक ही दिशा में अग्रसर होते हैं। सत्य के सुसंगति सिद्धांत के अनुसार कोई कथन सत्य होता है यदि उसे बिना किसी विरोधाभास के सुसंगत कथनों की प्रणाली में समाहित किया जा सके। सीधा सा अर्थ है कि अच्छी संगति अगर हम किसी के साथ करते हैं तो उससे हमें अच्छा ज्ञान और अच्छी विचार मिलेंगे, और जब हमारा ज्ञान सटीक होगा, ज्ञान और संगति अच्छी होगी, तो उससे मिलने वाले सभी जो विचार हैं वो भी अच्छे होंगे, और इस वजह से हम अपना और दूसरों का विकास भी हम कर सकते हैं। अच्छे संस्कार भी हम

प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में जो भी किसी प्रकार से अगर मान लीजिए संगति अच्छी है, हमें विचार अच्छे मिल जाते हैं, तो उस विचार से अगर कोई प्राणी वो दूसरा दुखी है तो उसे उसका दुख भी हम दूर कर सकते हैं। आइए सुने ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम दशहरा और इसे गाया था प्रदीप ने। गीतकार प्रदीप और संगीत एन दत्ता का था। आइए अब सुने विजय फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

ये संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है और हमारा जीवन एक महाभारत। हमारा कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अपनी महाभारत कभी हम शस्त्र के बिना लड़ते हैं, कभी शस्त्र के साथ, कभी अपने शत्रु के विरुद्ध और कभी अपने विरुद्ध। न्याय के लिए, सत्य के लिए, अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा विश्वास है, सबसे बड़ा शस्त्र हमारा कर्म है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ा है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है।

0: बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा आप

0: भर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंटी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोश्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात

0: कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स NTA पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in case

0: भारत ने मुश्तरका खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बार्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साला अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता डीएमआरसी ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियत बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीम बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को सुर्खी बनाया है, जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में NTA के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक NTA इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफर में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खुसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा असलाहत से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। कार्यक्रम सुने सुगम संगीत।

अभी आपने ये मृदुल कृष्ण शास्त्री की आवाज़ में ये भक्ति गीत सुना। आइए अब सुने गौरव कृष्ण गोस्वामी की आवाज़ में ये भक्ति गीत।

इसी वक्त के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गॉर्डन सिटी चैनल सूरत गाड़ा है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज राज्य में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में आज अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर के ओटीएस में भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित समारोह में इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त मौजूद रहेंगे। भारत टैक्सी सेवा देश की पहली सहकारिता आधारित डिजिटल

मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सेवा है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से संचालित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में दिए। मुख्य सचिव ने वर्ष 2024-25 और 25-26 की लंबित घोषणाओं के कार्य में तेजी लाने और वर्ष 2026-27 की घोषणाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने को कहा। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, अगले 3 महीने में सभी बजट घोषणाओं के वर्क ऑर्डर जारी करने और 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रगति नियमित रूप से CMIS पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC परिवारों के सर्वे की अवधि कल तक बढ़ा दी है। आयोग के सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि कई जिलों में सर्वे का काम अभी बाकी है।

0: को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही बजट घोषणाओं की प्रगति नियमित रूप से सीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी परिवारों के सर्वे की अवधि कल तक बढ़ा दी है। आयोग के सलाहकार अशोक कुमार जैन ने बताया कि कई जिलों में सर्वे का काम अभी बाकी है। इसे देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को कल तक सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आयोग को अपनी अनुशंसा रिपोर्ट निर्धारित समय पर राज्य सरकार को सौंपनी है। राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जा रहे इस सर्वे के आंकड़ों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित अनुशंसाएं तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। नेशनल परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी और कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये अपने पहले 24 घंटे में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि प्रदेश में पिछले ढाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र और वंचित लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया है। उन्होंने यह बात जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि गिवअप अभियान के माध्यम से रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को जोड़ा गया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित ना रहे।
2: सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने का जो अभियान चलाया गया था, उसी से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में भी हमें इस तरह का अभियान चलाना चाहिए, और वो अभियान हमने शुरू किया 1 नवंबर 2024 को। और मुझे बताते बड़ी प्रसन्नता है कि उस अभियान के तहत आज दिनांक तक 93 लाख लोगों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए, 67 लाख लोगों द्वारा गिवअप किया गया और 27 लाख लोगों द्वारा गिवअप अभियान के तहत ही जो उसमें था कि ईकेवाईसी अंगूठा लगाना जरूरी है, तो बहुत से लोगों द्वारा कि उन्हें पता था कि हम अंगूठा नहीं लगाएंगे, ईकेवाईसी नहीं करेंगे, तो अपने से बाहर हो रहे हैं, वो इस तरह 27 लाख लोग वैसे, तो कुल मिला के 93 लाख लोगों द्वारा स्वेच्छा से गिवअप किया गया।
0: राज्य पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तीसरे सप्ताह में 41,923 महिला श्रमिकों और 7,834 बुजुर्ग महिलाओं से सीधा संवाद किया गया है। पुलिस टीमों ने कच्ची बस्तियों, कारखानों, निर्माण स्थलों, ईंट भट्टों और प्रवासी बस्तियों में पहुंचकर महिलाओं को सुरक्षा, उनके अधिकार और साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी। अकेले रह रही बुजुर्ग महिलाओं और दंपतियों के घर जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी गई। राज्य पुलिस ने आपात स्थिति में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1099

छूने पर संपर्क करने की अपील की है। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि जिन अस्पतालों में प्रसव होते हैं वहां के स्त्री रोग विशेषज्ञों को मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों का मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए अगले 5 दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में सभी 108 एम्बुलेंस में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के प्रबंधन के लिए एंटी शॉक NASG गारमेंट उपलब्ध कराने और पैरामेडिकल कर्मियों को इसका प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निदेशालय स्तर पर कैंसर सेल गठित करने, कैंसर स्क्रीनिंग वैन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन के मानसून सक्रिय रहने और कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश जबकि कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से प्रभाव से ये स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर सहित करीब 20 शहरों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू में सबसे अधिक 195 मिलीमीटर और पाली में करीब 4 इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीकानेर जिले के लूणकरणसर में कंवरसेन नहर का चैनल टूटने से करीब 300 बीघा में खड़ी मूंगफली और कपास की फसल प्रभावित हुई है। बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कारगिल विजय की 27वीं वर्षगांठ पर राज्य सैनिक बोर्ड आज जयपुर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजन का सम्मान करेगा। ये समारोह बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में सप्तशक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा मुख्य अतिथि होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य में आज भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे का कल अंतिम दिन। प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 1 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगामी 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
1: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
2: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है, बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा

0: फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए. सो इट्स नॉट इजी.
1: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं. लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा.
0: जी,
1: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं.
0: जी, मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास, और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है. तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि गांव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहाँ जाना है. तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे, और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे. तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी. बट फिर मैं दादाजी के पास गई, और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तू हॉकी खेल. मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था, क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था. तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है, कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है. उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले. और हम एक, दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था. तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है, तो मुझे खेलनी तो हॉकी है.
1: अच्छा
0: जी. फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी, और वहाँ मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे, क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट. तो वहाँ पे मैं सेकंड आई थी. गई, मन नहीं लगा, क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: गवर्नमेंट होती है ना.
0: जी, डिसिप्लिन्ड. एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था, तो काफी रोती थी. हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर.
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
0: 13 साल की थी.
1: अच्छा जी. तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया.
0: टू मच, टू. अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया. इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ. काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी. मम्मी को बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी. खाना भी छोड़ दिया था खाना. मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ. तो पापा लेने आए, और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे सी कैन प्ले फॉर इंडिया. वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने. मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा. बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी. मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ. तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा, मंडे को तू वापस जा रही है. मैंने बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ. तो बोले कि नहीं बेटा, अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी. उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी. तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है. बोल, तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को देके आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे दो गोलकीपर हैं, तो मेरे पास साल में दो ही किट आती है, या तो आपको एक साल.
1: के पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना.
0: जी, मेरे पापा जॉब करते थे, बट 8,500-9,000 रुपए सैलरी थी. और वो चीज मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपए ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी. काफी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा. उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहां पे, और काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहाँ पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज किया.
1: आपने काफी गोल बचाए.
0: जी. तो वहाँ जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे, उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है. तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है मुझे.
1: लेकिन आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई एकेडमी गए, उसके बाद नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना. उस पर आपने एशिया कप खेला. ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया. तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे, और एक आज लड्डू बांटूंगा. तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है. कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया. आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे, तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. गई कैंप में, और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मैं भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है। और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा एक साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा। अच्छा? मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है बट वो चीज सच हुई। एक साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे, सविता वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था, है ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था बट जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है, तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली। तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को शायद लगता है कि गोलकीपर का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचेज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि शायद
1: हम साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती हैं,
0: या दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले। और मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले

0: रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: हाँ, आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही है ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या?
0: डेफिनेटली, क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है, तो ऑफकोर्स कैप्टन इज है
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली जॉब तो है। अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ, और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th-6th class तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस, कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकल कर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती है?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्र गुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप कि प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी, और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था, और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे, मेरा गला भराया था। मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ, तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी, और 250 मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं, 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा, वो पैसे तो मैं बचा सकती हूँ, मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो, मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी, और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे से हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना, और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी, तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहाँ पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी, लगी।
1: ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो
0: कि
1: क्या बोलते थे, मम्मा क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हो। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही हैं। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ, पेनल्टी शूट आउट।

0: या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती हैं आप?
1: पब्लिक स्पीकिंग।
0: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
1: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
0: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती थी?
1: पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
0: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
1: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
0: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
1: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
0: अच्छा
1: जी,
0: मुझे खाने को ना करना आसान है।
1: हाँ, मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
0: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
1: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
0: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
1: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
0: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजिशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर की हटकर, तो क्या होगी?
1: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
0: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में, और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें, और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी, जो आप गोल बचाती आई हैं, वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है, वही आगे भी लगातार जारी रहे। हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। मैं भगवान सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम खूबसूरत, और इसे गाया था अभिजीत और नीरजा पंडित ने। गीतकार गुलजार थे और संगीत जतिन ललित का था। आइए अब सुने उदित नारायण, श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत आप सुने।

अय्यप सुने। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गीत आप सुने। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है अन्नू मलिक का।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ में फिल्म दिल का रिश्ता का ये गीत आप सुने। गीतकार समीर हैं और संगीत नदीम श्रवण का है।

था उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 10 बजे हैं। आइए कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: श्रोता अंतराल से पहले गीता आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में, और इसे फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। गीतकार गुलजार थे और संगीत खय्याम का था। आइए अब सुने अखियों के झरोकों से फिल्म का गीत आप सुने, और इसे गाया है हेमलता ने। इसकी धुन तैयार की है रविंद्र जैन ने और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अंतराल के बाद स्वागत है श्रोताओं, आप आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म नमक हलाल फिल्म का ये गीत। आप सुने, गीतकार है प्रकाश मेहरा और संगीत है बप्पी लहरी का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम

सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कॉटन सिटी चैनल सूरतकढ़ से। आइए अब सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आम्रपाली का ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब सुने नागिन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था आनंद और इसे गाया था मुकेश ने। गीतकार गुलजार थे, संगीत सलील चक्रवेदी का था। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने अभिमान फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसकी धुन तैयार की है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है SD बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म हाथ की सफाई फिल्म का गीत। आप सुने, गीतकार है गुलशन बाबरा और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम आदमी, और इसे गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार शकील बदायूनी और संगीत नौशाद का था। आइए अब सुने ताजमहल फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार साहिर हैं और संगीत रोशन का है।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं अपनापन फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 11:01 हुए हैं। फिल्म संगीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नरेश वर्मा की तरफ से। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मोहब्बत की बारिश में भीगे हुए कुछ पुराने सदाबहार गाने।

दोस्तों, यूं तो सावन आने में अभी कुछ दिन बाकी है, मगर सूरतगढ़ और सूरतगढ़ के आसपास के इलाके में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से घटाओं की मेहरबानी हुई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे सावन हमसे ये कह रहा हो कि आप मेरा इंतज़ार न करें, मैं आ गया हूँ और मेरा स्वागत करें।

ना आनंद बख्शी ने लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, और ये फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश। और सावन के मौसम का ही एक ऐसा गाना हम आपको सुनवाते हैं जिसमें उमंग है और बहार है, साथ में प्यार है। बहुत खूबसूरत गाना आ रहा है आपके लिए।

दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत ये गाना सुना। सावन के अग्रिम स्वागत में ये गाना हमने आपको सुनवाया। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी।

तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं प्यार में। ऐसे ही प्यार भरे गाने हम आपको सुनवाएंगे ठीक 12 बजे तक फिल्म संगीत में। आपने गाना सुना आनंद बख्शी का लिखा हुआ, और ये खूबसूरत संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, और ये फिल्म थी आशा। इसी मौसम का, इसी प्यारे प्यारे मौसम का एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए और आ रहा है आपकी रेडियो तक, सुनिए। ये फिल्म है जुल्म का बदला।

दोस्तों, आप सुन रहे थे जुल्म का बदला फिल्म का ये खूबसूरत गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इन्हीं आवाज़ों में फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपके लिए आ रहा है ये खूबसूरत गाना। और ये फिल्म है दो प्रेमी, सुनिए। मौसम पे जवानी का ये गाना लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दो प्रेमी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अब प्यार मोहब्बत में क्या काम वकीलों का, मौसम ही कुछ ऐसा है प्यार मोहब्बत का। और ऐसा ही एक मौसम में भीगा भीगा सा गाना हम आपको और सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आइए सुनें।

दोस्तों, आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में ये गाना सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और ये फिल्म थी धरती, और इसी प्यार के मौसम का गाना आपके लिए आ रहा है ये, और फिल्म का नाम भी है प्यार का मौसम। सुने।

प्यार का मौसम, इस फिल्म का ये दो गाना आपने सुना। और इसी सावन के मौसम यानी प्यार के मौसम का एक और बहुत खूबसूरत दो गाना हम आपको सुनवाते हैं, सुने।

धूप और बादलों की आंख मिचौली है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। ऐसे में दौड़ धूप फिल्म का ये गाना आप सुने मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में।

दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में ये दो गाना सुना, दौड़ धूप फिल्म से। गाना जीवन कुशवाहा ने लिखा और ये संगीत था नरेश हंसराज का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

ये आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की। गाना एमजी हसमत ने लिखा है और संगीत उषा खन्ना का।

आपने बहुत ही खूबसूरत गाना सुना इस मौसम का, और हम आपको सुनवा रहे हैं सावन आने के स्वागत में बहुत ही खूबसूरत गाने। और लगता ऐसा है कि जैसे सावन आ ही गया है, जिस तरह से घटाएं छाई हैं और बरस रही हैं, मेहरबानी है उस तरह से, बस सावन आ ही गया। सुनिए ये गाना। बारिश फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। वर्मा मलिक ने गाना लिखा, संगीत उत्तम जगदीश का।

घटा छा गई है और इस मौसम में, बरसात के इस मौसम में आखिर मौसम का तकाजा क्या है, ये हम आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा ये खूबसूरत गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अंधा कानून फिल्म से। आप सुनते रहिए ये प्यारा गाना और नरेश वर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त 12 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। 12:30 पर सुगम संगीत में चंद गज़लें। 12:50 पर आप सुनिएगा खेत खलियान में पशुओं में टीकाकरण, उन्नत पशुपालन विधियां विषय पर जानकारी। 1 बजे जयपुर से हिंदी में समाचार। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। कार्यक्रम पेश करेंगी मंजू शर्मा। जानकारी के विषय रहेंगे पद्मश्री सम्मानित सुश्री दीपिका रेड्डी और महीने की शुरुआत और बचत का प्रबंधन कैसे करें। इसके साथ ही दादी नानी के अनुभव और सीखें, और साथ में आपके लिए चंद गाने होंगे। 2 बजे मिड डे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 2:30 पर फिल्म संगीत में आप सुनेंगे चंद खूबसूरत गाने, और 3 बजे दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रसारण रिले होंगे।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। जानकारी के विषय रहेंगे राजस्थान के प्रमुख संत, भारत की नदियाँ और नशा जीवन का नाश। कार्यक्रम पेश करेंगे करण वर्मा चंद खूबसूरत गीतों के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 6:05 पर कार्यक्रम होगा सराय की। 6:30 पर हिंदी में समाचार। 6:40 पर ज़िले की चिट्ठी। 6:45 पर राजस्थानी में समाचार हम अपने आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। जानकारी के विषय रहेंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं, बागवानी में सामयिक कार्य, कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सावधानियां, और इसके साथ ही आप चंद लोकगीत और लोक भजन भी सुनेंगे। 7:45 पर आप सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8 बजे दिल्ली से संसद समीक्षा पेश की जाएगी। 8:15 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में जानकारी और गीत। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से, और 8:45 पर समाचार संध्या, और 9 बजे न्यूज़ 8:09 भी आप सुनेंगे दिल्ली से।

रात 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा।

10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:05 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम अनुरोध गीत।

सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से दोस्तों, आज फिल्मी दुनिया के मशहूर संगीतकार G.S. कोहली, इनकी पुण्यतिथि है और इनको हम याद करते हैं और अनुरोध गीत कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ। G.S. कोहली मुख्य रूप से संगीतकार ओ.पी. नैयर के सहायक रहे और ओ.पी. नैयर की तमाम फिल्मों में इन्होंने रिदम पक्ष का जो है वो संगीत तैयार किया और कुछ एक फिल्में इन्होंने स्वतंत्र रूप से भी बनाई, संगीत दिया। उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है शिकारी, जिसका गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। फारूक कैसर ने गाना लिखा है और संगीत G.S. कोहली का, जिनका आज ही के दिन 25 जुलाई 1996 को निधन हुआ। इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम पहला गाना सुनवाते हैं इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ आप सब साथियों के लिए। आप हैं पाकुड़ से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु और आपके बहुत से साथी। दूलापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा और आपके बहुत से साथी। आप हैं खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा और आपके परिवार के लोग। आप हैं अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और आपके सभी साथी। आप हैं हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान और आपके परिवार के लोग। आप हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और आपके साथी। ये गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आपके परिवार के लोग। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और आपके परिवार के सभी सदस्य। ये संदेश मिला है मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा सबिस्ता और आपके परिवार के सभी लोग। ये संदेश मिला है सांगली जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत और आपके सभी साथी। ये संदेश हमें मिला है दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और आपके सभी साथी। नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिढा, अलका मिढा और ये संदेश मिला है सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग और आपके परिवार के लोग। नाभा पटियाला से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और आपके सभी साथी। खरगोन से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा और आपके सभी साथी। इसी गाने को हम सुनवाना चाहते हैं सुरेश खुराना, पप्पी और किरण खुराना और आपके परिवार के लोग, MLB रोड ग्वालियर से। और रानी झाम बिट्टू झाम आप लिखते हैं बीकानेर से। ये संदेश मिला है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया और सभी साथी। सूरतगढ़ से लेखराज शाक्य, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, रवि कुमार और आपके बहुत से साथी। अनूप शहर भादरा से लिखते हैं गजानंद सारस्वत, ताराचंद, सोनू, पवन कुमार और आपके सभी साथी। ये संदेश मिला है रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना और आपके परिवार के लोग। आप हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और आपके सभी साथी लोग। आप हैं लिखते हैं बनवारी लाल मलखट, हंसराज मलखट, सुल्तान राम मलखट, 58 NP रायसिंह नगर से। और आप हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और आपके परिवार के लोग। और आप हैं बागपत यूपी से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। आप सभी साथी सुने अपनी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गाना शिकारी फिल्म से।

आपने शिकारी फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुना। अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं प्रीति सागर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। ये फिल्म है भूमिका। कुछ खत भी हैं हमारे पास, कनेरा मोहल्ला पटियाला से। मुकेश बता, नीलम बता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बता। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला, गैरी इंदौरा, विकास इंदौरा और आपके परिवार के सभी लोग। और आप हैं मक्खू से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर और आपके परिवार के लोग। और आप हैं दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और आपके परिवार के सभी लोग। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी और आपके परिवार के सभी लोग संदेश मिले हैं। और बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य और आपके परिवार के सभी लोग। आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। और साथ में ये संदेश हमें मिला है अरायण से बनवारी लाल जयपाल, बिमला जयपाल, ममता, सोनू, दिशा और आपके परिवार के सभी लोग। नई आबादी हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और आपके परिवार के सभी लोग। और ये संदेश मिला है गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह, संगीता कंवर और आपके सभी साथी। आप हैं अमरपुरा जालू से जगदीश चंद्र प्रजापति, बिमला प्रजापति, मोनू और आपके सभी साथी। घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, सचिन और ईवा धारणिया और आपके परिवार के सभी लोग। फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, सौरभ डूडी और आपके परिवार के लोग। ये संदेश मिला है मोताला से विजय सुरलकर, रतनमाला और आपके सभी साथी। गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और आपके परिवार के लोग।

गंगानगर से नेकीराम बांशीवाल, जानी बांशीवाल और आपके सभी साथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये संदेश मिला है पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश। और आप हैं सूरतगढ़ से बुलढाणा बड़सिंगी से, आप लिखते हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर और आपके परिवार के सभी लोग। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। और आप हैं भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और आपके परिवार के सभी लोग। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आप लिखते हैं लक्सर हरिद्वार से। और आप हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल और आपके सभी साथी। आप हैं वांडीवाला से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और आपके सभी साथी। और आप हैं चंडीगढ़ से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा, सादुल शहर से संदेश हमें भेजते हैं रामकुमार रेवाड और चंद्रकला रेवाड। आप सभी साथियों को सुनवाते हैं भूमिका फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना, सुने।

आप सुन रहे थे भूमिका फिल्म का ये प्यारा सा गाना। अगला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आप सबके लिए गाना आ रहा है कोल सिटी बरका काना से, अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, और आप हैं गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार और आपके परिवार के लोग। आप हैं अनारकली बाजार।

जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और आपके सभी साथी। आप हैं 12 से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी और आपके परिवार के लोग। और ये संदेश हमें मिला है केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी और आपके सभी साथी। लखू वाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा विशाल, राजबाला ममता और आपके परिवार के सभी लोग। हीरा वाली फाजिलका से आप लिखते हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु और आपके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र और आपके सभी साथी। ये संदेश हमें मिला है प्रवीण सोनी, पूजा पायल की तरफ से गांधी ग्राम गुजरात से आप लिखते हैं। जनकपुरी से, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और आपके परिवार के सभी लोग। और आप हैं हमारे साथी सिद्धार्थ नगर, दरियापुर बाबली से लिखते हैं गजानंद येले, नवदीप येले और सारा येले परिवार। और ये है संदेश दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और मेहरा परिवार। और आप हमारे साथी हैं ज्योति नगर नोखा से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री और आपके बहुत से साथी। आप हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन और आपके सभी साथी लिखते हैं कुरावली से। और आप हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी और आपके बहुत से साथी। आप सभी साथियों के लिए आ रहा है ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके रेडियो तक, सुनिए।

दोस्तों, आपने लता की आवाज़ में जीवन मृत्यु फिल्म का ये गाना सुना। अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं अनुराग फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आप सबके लिए। गोविंद गढ़ माझी वाला से आप लिखते हैं राजू टूटे जा, खुश दिल उर्मिला टूटे जा, गुड्डू जीनू, और झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और आपके परिवार के लोग। आप हैं मरहरा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन और आपके परिवार के सभी लोग। और ये ख़त हमें कुछ मिले हैं मुक्सर से, बाबू सिंह धीवान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत और आपके साथ हैं निशु, और आप हैं 15 PS से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन और गुरमन जोशन। और ये ख़त हमें मिला है बृजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान की तरफ से। आपने लिखा है मंडी गोलवाला से। आप हैं गिद्दड़बाहा पंजाब से परवीन तनेजा, मनजीत तनेजा, पायल और बेबी हिनासा। और यह ख़त हमें मिला है विनोदपुरी, VP रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, BK पुरी। आप लिखते हैं आपके सभी साथी हैं लुधियाना से। और आप हैं प्रेम जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वीरेंद्र सिमरन, करणवीर हाउस, भुच्चो कैंचियाँ, बठिंडा से आप लिखते हैं। और आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और आपके परिवार के सभी लोग। आपने लिखा है प्रमिलागंज आलोट से। और ये खत जो है वो हमें मिला है सतीश मिगलानी, सीमा विवान, अनमोल, वीर सिंह और रमेश मिगलानी की तरफ से। आपने ये खत लिखा है मलोट पंजाब से। आप सभी साथी सुने कार्यक्रम का ये आखिरी गाना आपके लिए, आइए सुने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हो चुके हैं। अब सुने सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कलाकार थे गुलाम अली। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब सुनिए खेत खलिहान। जानकारी का विषय है पशुओं में टीकाकरण और उन्नत पशुपालन विधियाँ। आइए सुनते हैं, जानकारी दे रहे हैं भारतभूषण शर्मा। आइए सुने।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आपनों मानव शरीर है इंगमा भी आपां देखा कि जब कोई महिला गर्भवती होवे तो बिंगा टीकाकरण कराया जावे, बच्चे ने सुरक्षित रखने वास्ते माँ के पेट से ही टीकाकरण के माध्यम से बिना सुरक्षा मुहैया कराई जावे, ताकि बच्चों जन्म सोरो ले सके और बिंगे बाद में बच्चे को भी आपां समय समय के ऊपर टीकाकरण करवावा। आज सागी की सागी बात लागू हुए पशुओं के ऊपर। पशुओं में भी समय समय पर आपां देखा कि अनेक तरीके का जिका संक्रामक रोग है वह होमतर वह जगह के कारण आपने देखने में आवे कई बिरिया पशु की मृत्यु भी हो जाए और मृत्यु ना भी हुए, तो पशु की जी की उत्पादन क्षमता है बिंग में कमी आने लग जाए। उत्पादन क्षमता में कमी आवे तो कठे न कठे वो नुकसान भी आपनों ही होवे। पशुओं में बीमारियां के होने से पशुपालकों पर भी अलग खर्चों पड़े। इन वास्ते पशुओं ने बीमारियां से बचाए रखने वास्ते टीकाकरण कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रोग निरोधी और समय के अनुसार टीकाकरण

ध्यान भी आपणो ही होवे। पशुओं में बीमारियां गए होने शू पशु पालकां पर भी अलगू खर्चो पड़े। इन वास्ते पशुओं ने बीमारियां शू बचाए रखने वास्ते टीकाकरण कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। रोग निरोधी और समय के अनुसार टीकाकरण शू पशुओं की रक्षा जी की है आप संक्रामक रोगों कर सका। पशुओं ने पूरी सुरक्षा प्रदान करने वास्ते आप वैक्सीन को उपयोग करा और संक्रामक जी का रोग है बहु आप बने बचा सका। सामान्य रूप से जिका संक्रामक रोग है बांगे प्रति निश्चित उम्र निश्चित समय के अंतराल पर आप टीकाकरण करवा सका। लेकिन कई बीरियाँ रोगी जी की व्यापकता है अगर बढ़वार हो जाए रोग बढ़ जाए तो बिंग आधार पर भी आप टीकाकरण कार्यक्रम है जी को वो आपके तरीके से कर सका। आपने त्रिया पशुओं में भी रोग प्रतिरक्षा वास्ते टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पर कठे न कठे अशिक्षा की वजह से या भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कई बरियाँ इसी भ्रांतियाँ फैलेड़ी हुए जगह के कारण आप टीकाकरण कौन करवावा। जी हाँ टीकाकरण से दूध को जी को उत्पादन है वो कम हो जाएगा। ऐसी बात आपने चर्चा में आमती रहे पशुओं में गर्भपात होने लग जाएगा। जे आप टीको लगायो तो जी को बारी बारी टीकाकरण की आपने जरूरत को नहीं होनी चाहिए। मुफ्त का जी का टीका है वह काम कौन करे। आपने पशुओं में जब बीमारी को नहीं तो आप टीका क्या वास्ते लगावा। ए इसी चर्चा जी की है सामान्य चर्चा है और आगे चालता आपा की है टीकाकरण का नहीं ध्यान कौन देवा। और अब तो आपने देखने में आवे कि राजस्थान सरकार है चाहे पशुपालन विभाग है वे कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जका को निःशुल्क टीकाकरण करे। कई टीका साल में दो बरियाँ लागे जिका ने लगवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुआ है। अन्यथा पशु ने अगर रोग आ जाए इसो संक्रामक रोग आ जाए तो आप पशु ने बचा भी कौन सका भी समय में। तो टीकाकरण पशुओं में होने वाली जी की गंभीर ए संक्रामक बीमारियां हैं बाशु आप बचाव कर सका और वो ही एकमात्र उपचार है जगह शू आप पशु ने मरण शू बचा सका। इंगा लाभ आपन बहुत हुआ है। एक तो संक्रामक रोगों वास्ते रोकथाम हो ही जाएगी और सागे टीकाकरण शू पशुओं के शरीर में बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए जगह पशु जी को है वो छोटी मोटी बीमारी तो भी ही झेल जाए। टीकाकरण करने पशु को खुद की जी की प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूत हो जाए और रोगों लड़न की क्षमता जी की है बिंग शरीर के माँ आ जाए। कई रोग ऐसा हुआ है जिका लक्षण कई पशुओं के माँ मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र के कारण बहुत लंबे समय तक दिखाई कौन देवे और जब वह उबर के आवे तो फिर पशु की मौत हो या ही सर है। दूसरा जी का कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाला पशु हुए वह जल्दी बीमार हो जाए और इन कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र के कारण पशुओं को बचाव जी को है वो आप टीकाकरण से ही कर सका। वही एकमात्र अपने कने इलाज है। टीकाकरण करके आप पशु ने बीमारियों तो बचा ही सका और पशु को जिको दूध की उत्पादन की क्षमता है बिना भी बढ़ा सका। बीमार पशु के इलाज में दवाइयां को एंटीबायोटिक को आंगो खर्चो बहुत ज़्यादा हुआ है बिन शू भी आपा ने बचत मिल जावे जद आपा टीकाकरण कराइड हुआ है। टीकाकरण को जिको समय बिंग अनुपालन पशुओं को स्वस्थ और ज़्यादा उत्पादनशील रखने में आपा ने बहुत ही ज़्यादा मदद करे। टीकाकरण आपा पशुजन्य जी की बीमारियां हैं वह पशुओं से मनुष्यों में भी संक्रमण न रोक सका। कई बार आप देखा कि बीमारी पहला पशुओं में आवे पशुओं के दूध से मनुष्य के अंदर भी वह बीमारी जी को है तो आपको दूसरों रूप लेगे और उभरण लग जाए। बिंगो जब मूल में आप जावा तो ठा पड़े कि जी को पशु हो वो संक्रमित हो और बिंग दूध पीण छू जी को बच्चा है या बुजुर्ग है या आपा खुद हाँ युवा के अंदर भी वह बीमारी जी को है वह आन लग जाए और संक्रमित हो गए कई बार मनुष्य की भी मौत हो जाए। तो इन शू आप जब आप टीकाकरण कराइड होवेगो तो पशु जी को है वो स्वस्थ रहेगो और आपा भी सुरक्षित रहवांगा। टीकाकरण आपा संक्रामक रोगों जुड़ेड़ा जी का उपचार है बांगी लागत ने भी कम कर सका वो भी आपा ने कठिन कठे फायदों हो सी।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ

0: तो टीकाकरण कराना बहुत ही जरूरी है। करनो के कोनी आपा, एक तो टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक पशु ने तनाव कौन देनो, पशु ने एकदम सोरो रखना है। रोगी या दुर्बल जी का पशु है या बूढ़ा पशु है, आपा ने टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए। टीकाकरण के बाद में 2 सप्ताह तक पशुओं में उपचार वास्ते एंटीबायोटिक या कोई ताकत वाली जी की दवाइयाँ आपा कई बरियाँ दे दें या कृमिनाशक की दे दें तो वह आपा ने देनी कोनी। 2 हफ्ता तई पशु ने आपा कोई भी ऐसी चीज़ ना देवा कि टीके को असर कम हो जाए या टीके जी को आपनों लगाएड़ो है बिंगो उल्टो असर कर जाए। 11 जी के पशु है बिंग है गर्भावस्था के अंतिम दिनों में बिल्कुल भी टीकाकरण आपा ने नहीं करवाना चाहिए। संक्रमित या रोगग्रस्त जी का पशु है बंग मापा ने टीकाकरण से परहेज करना चाहिए। आ छोटी छोटी बातों जो आप ध्यान रखांगा और टीकाकरण आप समय समय पर कराता रहांगा तो पशु जी को है वो स्वस्थ रहेगो, पशु स्वस्थ रहेगो तो आप भी जी को है वह खुशहाल रहांगा। तो अब हूँ चालू, राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था पशुओं में टीकाकरण और उन्नत पशुपालन विधियाँ। जानकारी दे रहे थे भारत भूषण शर्मा। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1 बजने वाला है, अब जयपुर से समाचार होंगे, सुने।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम माई भारत के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदारी बनाना है। कार्यक्रम 4 जून से 30 जून तक लद्दाख

देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि यह पर्व भक्ति और करुणा के शाश्वत संदेश का प्रतीक है। उन्होंने भगवान विट्ठल से सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सद्भाव की कामना की। प्रदेश में भी आज देवशयनी एकादशी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। श्रद्धालु गोवर्धन की सप्तकोशी परिक्रमा भी कर रहे हैं। आज से चातुर्मास का भी आरंभ हो गया है। इसके साथ ही अगले चार माह तक विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य नहीं होंगे। भरतपुर रेंज पुलिस ने प्रहार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 666 वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न मामलों में 157 नए प्रकरण दर्ज किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 इनामी बदमाश और 12 कुख्यात अपराधी शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर प्रीति चंदा ने बताया कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग जिलों में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों की 303 टीमों ने लगभग 2000 स्थानों पर दबिश देकर यह कार्रवाई की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी तथा एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की है। सबसे अधिक वर्षा सिरोही जिले की माउंट आबू तहसील में 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही में 9 सेंटीमीटर, श्रीगंगानगर जिले के करणपुर में 8 सेंटीमीटर, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में 7 सेंटीमीटर तथा बाड़मेर जिले के बालोतरा और जोधपुर जिले के ओसिया में 6-6 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। अजमेर जिले की जवाजा और सरवाड़ में भी 5-5 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे बना हुआ है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। ये शोध भविष्य में मानसिक रोगों की शुरुआती पहचान, बेहतर उपचार, स्वस्थ वृद्धावस्था और एआई आधारित नई तकनीकों के विकास में उपयोगी साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं ने यह समझने का प्रयास किया कि हमारा मस्तिष्क ध्यान,

0: है बल्कि उनके निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, संचार तकनीक और सहायक उपकरणों के विकास में भी उपयोगी साबित होगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल।

हौसलों की उड़ान से ही ऊंचाइयां मिला करती हैं। मेहनत करने वालों की राहें खुद खुला करती हैं। जो ठान ले बदलना दुनिया अपनी लगन के दम पर, ऐसे ही लोगों की मिसालें सदा दिया करती हैं। नमस्कार बहनों, आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें हम जानकारी देते हैं किसी पर्यटन स्थल की, या मिलवाते हैं उन महान हस्तियों से जिन्होंने अपनी प्रतिभा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपिका रेड्डी जी ने अपने बचपन से ही नृत्य के प्रति गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कठोर साधना, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर कुचिपुड़ी की बारीकियों में महारत हासिल की। उनके लिए नृत्य केवल कला नहीं, बल्कि ईश्वर की उपासना और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। समय के साथ उन्होंने अपनी अनूठी शैली, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और प्रभावशाली मंच प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति की झलक, आध्यात्मिकता की गहराई और भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है।

मैनू गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे पद्मश्री सम्मानित दीपिका रेड्डी जी के बारे में। दीपिका रेड्डी ने अपने प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने यूरोप, एशिया और अन्य देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हुए कुचिपुड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यक्रमों को हर जगह सराहना मिली और विदेशी दर्शकों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सुंदरता को निकट से अनुभव भी किया। उनकी कला और योगदान को देखते हुए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसके सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उनके नाम हैं। वर्ष 2026 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया, जो कला के क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन और उल्लेखनीय योगदान का राष्ट्रीय सम्मान है। दीपिका रेड्डी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, निरंतर अभ्यास, अनुशासन, समर्पण और

संस्कृति के प्रति सम्मान ही किसी कलाकार को महान बनाते हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास ईमानदार हो तो विश्व का कोई भी मंच दूर नहीं रहता। उनके प्रयासों से कुचिपुड़ी नृत्य न केवल जीवित है बल्कि निरंतर विकसित भी हो रहा है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, अब बात करते हैं ऐसे विषय की जो हर परिवार, हर नौकरी पेशा व्यक्ति, हर गृहिणी, हर छात्र और हर छोटे बड़े व्यवसायी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वह विषय है महीने की शुरुआत और बचत का प्रबंधन। अक्सर ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में वेतन या आमदनी हाथ में आते ही खर्चों की लंबी सूची सामने आ जाती है। कुछ ही दिनों में जेब हल्की होने लगती है और महीने के अंत तक आर्थिक परेशानी महसूस होने लगती है। लेकिन थोड़ी सी योजना, अनुशासन और समझदारी अपनाई जाए तो न केवल पूरे महीने का खर्च आसानी से चलाया जा सकता है, बल्कि अच्छी खासी बचत भी की जा सकती है। बहनों, बचत केवल पैसे जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि ये भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है। जीवन में अचानक आने वाली परिस्थितियाँ, जैसे बीमारी, बच्चों की शिक्षा, किसी ज़रूरी यात्रा या अन्य आकस्मिक खर्च, यदि पहले से बचत की हो तो आसानी से संभाले जा सकते हैं।

मैनू गीत से पहले हम बात कर रहे थे बचत प्रबंधन की। महीने की शुरुआत में सबसे पहला काम होना चाहिए अपनी कुल आय का सही आकलन करना। ये स्पष्ट करें कि इस महीने आपके पास कुल कितनी राशि उपलब्ध है। इसके बाद अपने सभी आवश्यक खर्चों की सूची तैयार करें, जैसे घर का राशन, बिजली, पानी का बिल, बच्चों की फीस, किराया, दवाइयाँ, यात्रा का खर्च और अन्य ज़रूरी भुगतान। और एक अच्छी आदत ये भी है कि आमदनी मिलते ही सबसे पहले बचत के लिए एक निश्चित राशि अलग रख दें। कई लोग महीने के अंत में जो बच जाए उसे बचत मानते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि पहले बचत करें और फिर शेष राशि से खर्चों की योजना बनाएं। जिस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता हो वही वस्तु खरीदें। घर पर बिजली पानी का सोच समझ कर उपयोग करें। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश भी करें। निवेश का चुनाव अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। लेकिन बहनों, बचत करना अपनी जगह एक सही आदत है, लेकिन बचत के चक्कर में जीवन की आवश्यक खुशियों से दूरी ना बनाएं। संतुलित खर्च और नियमित बचत ही आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है।

बहनों, जीवन की भाग दौड़ में चाहे हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन दादी नानी की सीख, उनकी कहानियाँ, उनके अनुभव, उनका स्नेह आज भी हमारे जीवन का अमूल्य खजाना है। हमारे घरों में दादी और नानी केवल परिवार की बुजुर्ग सदस्य नहीं होती, बल्कि वे अनुभवों का चलता फिरता विद्यालय होती हैं। उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे होते हैं। सुख दुख, संघर्ष और सफलता, हर परिस्थिति से गुजर कर वे जो ज्ञान अर्जित करती हैं, वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। बचपन में जब रात को दादी या नानी हमें राजा रानी, पंचतंत्र, रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थीं, तब शायद हमें केवल मनोरंजन दिखाई देता था। लेकिन उन कहानियों में छिपे सत्य, ईमानदारी, साहस, दया, परिश्रम और सदाचार के संदेश जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दादी नानी हमेशा कहती थीं कि मीठा बोलो, रिश्ते निभाओ और दूसरों का सम्मान करो। आज के समय में जब लोग व्यस्तता के कारण एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते, तब उनकी ये सीख और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छे व्यवहार और विनम्रता से कठिन संबंध भी सहज बन जाते हैं।

बहनों, हम बात कर रहे थे नानी दादी के अनुभवों और सीख की। दादी नानी की सीख थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। आज के दौर में जब उपभोक्तावाद और दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यह सीख आर्थिक संतुलन बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। दादी नानी घरेलू नुस्खों की भी अनोखी जानकार होती थीं। सर्दी जुकाम होने पर तुलसी अदरक का काढ़ा, हल्दी वाला दूध या छोटे मोटे घाव पर घरेलू उपचार, ये सब उनके अनुभव का हिस्सा थे। नियमित दिनचर्या, समय की पाबंदी, अनुशासन, संतुलित भोजन, अनुशासन का पालन करना और उनकी सीख का, ये सब उनकी सीख का हिस्सा थे। प्रकृति से प्रेम, पेड़ पौधे और पर्यावरण संरक्षण का भली भांति पालन करना। बहनों, दादी नानी का स्नेह, उनका धैर्य, उनकी सीख और उनका अनुभव जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। समय बदल सकता है, जीवन शैली बदल सकती है, लेकिन उनके संस्कार, जीवन मूल्य कभी पुराने नहीं होंगे। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको अनदेखा अनसुना नहीं करना चाहिए, गलती से भी उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बड़े बुजुर्ग बच्चों जैसे हो जाते हैं तो उन्हें प्यार से मना लेना चाहिए, कभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए।

चलिए बहनों, अब बात करते हैं कुछ खाने पीने की। बात करते हैं फलों के राजा कहे जाने वाले आम की। गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में तरह तरह के आम दिखाई देने लगते हैं। स्वाद, सुगंध और रंग से भरपूर ये फल भारत की पहचान भी हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आम पसंद ना हो। आम का नाम सुनते ही मन में मिठास घुल जाती है। भारत में आम की खेती हजारों वर्षों से की जा रही है। यहाँ सैकड़ों किस्मों के आम पाए जाते हैं, जिनमें से कई देश विदेश में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। हर क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार आम की अलग अलग किस्में विकसित हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फांसो आम की। इसे आमों का राजा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और देवगढ़ क्षेत्र में उगाए जाने वाला यह आम अपनी गहरी सुगंध, गुदेदार बनावट और मीठे स्वाद के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका रंग सुनहरा पीला होता है और इसका उपयोग ताज़ा खाने के लिए तथा साथ साथ में जूस, आइसक्रीम और मिठाइयों में भी किया जाता है।

बहनों, हम बात कर रहे थे आमों की, अब बात करते हैं दशहरी आम की। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद क्षेत्र का दशहरी आम पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसका आकार लंबा, छिलका पतला और गूदा बेहद मीठा होता है। इसके बाद आता है लंगड़ा आम। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में उगाया जाता है। इस आम का रंग पकने के बाद भी हरा बना रहता है, लेकिन इसका स्वाद अत्यंत मीठा और सुगंधित होता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। चौसा आम भी भारत की लोकप्रिय किस्मों में शामिल है। यह बिहार, यूपी और हरियाणा में अधिक पाया जाता है। चौसा आम बहुत रसदार होता है और उसे चूसकर खाने का आनंद भी अलग होता है। गर्मियों के अंतिम दिनों में यह बाजार में अधिक मात्रा में दिखाई देता है। इसी तरह केसर आम अपने केसरिया रंग और मीठी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है।

भारत का बंगनपल्ली आम भी अपना विशेष स्थान रखता है। इसके अलावा बहनों भारत में तोतापुरी, हिमसागर, नीलम, मल्लिका, आम्रपाली, फजली, सफेदा, इमाम पसंद और सिंदूरी जैसी अनेक किस्में भी उगाई जाती हैं। आम से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे चटनी, अचार, पन्ना, मुरब्बा, आमरस, जूस, जैम, मिल्क शेक और मिठाइयाँ आदि। और भारत में कई स्थानों पर आम महोत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। बहनों, आम केवल एक फल नहीं, बल्कि भारत की कृषि, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। इस मौसम में आम खाएं और किसानों के परिश्रम की भी सराहना करें।

0: The holy city of Puri is immersed in an atmosphere of profound devotion and festivity as the revered Sunabesa or the golden attire of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be ceremonially observed this evening atop their majestic chariots stationed on the grand road. During this time honored ritual, the Shivling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials, symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
1: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jhandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल

0: जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: जीआरएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को

0: मल मिलाते हुए चार प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश

0: खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब सुने फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार, नरेश वर्मा की तरफ से। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं 1990 के दशक के कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत गाने। पहला गाना आप सुने विजयपथ फिल्म से, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ में, सुनते हैं।

साधना सरगम और साथियों की आवाज़ में आपने विजयपथ फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुना, और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश।

मोहब्बतें फिल्म का ये गाना सुनिए, उद्धव ईशान और श्वेता सोनाली की आवाज़ में। आनंद बख्श का गाना है और ये संगीत है जतिन ललित का।

मोहब्बतें फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश। सुनिए।

ये फिल्म है कुरुक्षेत्र, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। ये गाना देव कोहली ने लिखा है और संगीत है हिमेश रेशमिया का। सुनिए ये खूबसूरत गाना।

आप सुन रहे थे कुरुक्षेत्र फिल्म का ये गाना, और अब सुनिए हेलो ब्रदर फिल्म का ये गाना, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। गाना लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का। आइए सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अंदाज़ फिल्म का गाना, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर का गाना है और संगीत नदीम श्रवण का है, आइए सुनें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

खबर्स है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का अब आगाज होता है। नजर डालते हैं आज की इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 पर कश्मीरी लोकगीत नशर किए जाएंगे और 4 से आप फिल्मी नगमों का लुत्फ उठा सकेंगे। शाम के 4:50 पर खबरें नशर होंगी और 5 आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुनम्मार से खबरें सुनिए। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदउनवानियों के मामलात की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाज सिंह ओंटारियो में स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियरशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि शिवसागर और जोरहाट जिले सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। मजीद 14 अफराद के हलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। दीखू, दिसांग और धनसीरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। आफात से निपटने वाली टीमें और जिला हुक्काम मुतासरा इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों इमदादी कामों की

पेशरफ्त वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने बाज आबादकारी, तामीर नो की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत के इमदाद से मुतालिक कमीशन ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जानें तल्फ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुक्काम ने बचाव इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासर इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत के मौसमियात महकमे ने आज गुजरात में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह के हालात रह सकते हैं। मौसमियात के महकमे ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, साहिली कर्नाटक, मगरबी बंगाल के गंगा

मौसमियात महकमे ने आज गुजरात में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह के हालात रह सकते हैं। मौसमियात के महकमे ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, साहिली कर्नाटक, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, पंजाब, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक और उत्तराखंड में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। सिक्किम के नामची जिले के फामटाम गांव में आज मिट्टी के तोदे खिसकने के बायस 2 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। नामची के SSP ने कहा है कि लाशों को निकाला जा रहा है। 2 जख्मियों को इलाज के लिए नामची जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुश असलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है जिनमें इम्तिहानात का पर्चा लीक होने और मुतल्लिका बदनवानियों के मामलात की तेजी से समाप्त की जाएगी। ये हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तिहानात से मुतालिक बदनवानियों के मामलात की जल्द समाअत का यकीन दिलाया था और वज़ीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था।

0: आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से यात्रा मुअत्तल थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 खसूसी अदालतें नामजद की हैं, जिनमें पेपर लीक और मुतल्लिका बदउनवानियों के मामलों की तेजी से समाप्त होगी। भारत की अनाहा सिंह स्क्वाश की खवातीन की आलमी जूनियरशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियां जारी हैं। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

दुनिया।

0: इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको कश्मीरी लोकगीत सुनवा रहे हैं।
1: पान।

सुबह ही लोकगीतों के प्रोग्राम में आज आपने कश्मीरी लोकगीत सुने। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

0: सोनू निगम के साथ साधना सरगम को आपने सुना, फिल्म थी हम तुम। अब सुनिए उदित नारायण की आवाज में हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म का नाम है हमराज।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से

उदित नारायण के साथ अलका याग्निक की आवाज में ये नगमा था राज फिल्म से। अब सुनिए सलामी फिल्म का नगमा, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: सांस थी, धड़कन अधूरी थी।
1: सोनू निगम और सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल की आवाजें अभी आपने फना फिल्म में सुनी। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू, अलका याग्निक को सुनिए, फिल्म है खुददार।

कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाजों में ये नगमा था कभी खुशी कभी गम फिल्म से। अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है आंदोलन।

अब सुनिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश उदित नारायण और मधुश्री की आवाजों में। फिल्म का नाम है किसना।

उदित नारायण और मधुश्री की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे किसना फिल्म से ये नगमा। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप मतलब मार्ग से खबरें सुनिए। भारत और इसराइल के दरमियान मुजवजा आजाद तजारती माहिदे के बारे में गुफ्तगू का दूसरा दौर खत्म हो गया है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है, मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। भारत की अनाहत सिंह ओंटारियो में स्क्वैश की खवातीन की आलमी जूनियर शिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इसराइल के दरमियान मुजवजा आजादाना तजारती समझौते के बारे में गुफ्तगू का दूसरा दौर खत्म हो गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस महीने की 20 से 23 तारीख तक बातचीत हुई थी और फरीकैन ने समझौते के तमाम पहलुओं के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया और जामे मुतवाजिन और दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद आजादाना तजारती समझौते के सिलसिले में इस बातचीत को आगे बढ़ाया। तजारत और सनअत की वजारत ने बताया है कि यह तबादला तामीरी रहा और मजीद आगे बढ़ने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल विकसित दरक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के बारे में मुल्क के नौजवानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। मुल्क के हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 400 से ज्यादा नौजवान जनाब मोदी से गुफ्तगू करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को आज उनके योम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट, साबिक अरकान पार्लियामेंट और दूसरी शख्सियात ने सोमनाथ चटर्जी को गुलाय अकीदत नजर किए। नायब सदर सीबी राधाकृष्णन ने आज कहा कि ऐवान में गुजारा जाने वाला हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर लम्हा जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में राज्यसभा के नौ मुंतखब और नामजद अरकान के लिए मुनाकिदा दो रोजा तारुफी व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बहस मुबाहसा हमेशा किसी नतीजे और फैसले तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेहतमंद और तामीरी बहस मुबाहसा जमहूरियत को मजबूत करता है जबकि बाहमी ताउन मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। उन्होंने अरकान से अपील की कि बावानी मुबाहसों, ऐवान के जाबतों के एहतराम और वक्फे सवार और वक्फे सिफर का मुअस्सर इस्तेमाल करके ऐवान की आला अकदार और रिवायात को बरकरार रखें। इसी दौरान मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निपटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मुसवदे को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मुसवदे को मंजूर किया गया। जराये ने हमारे नाम निगार को बताया कि उम्मीद है कि मुजवदा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी

कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदाम एनटीए में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो नीट यूजी पेपर लीक मामले पर मौजूदा एहतजाज के बारे में सोशल मीडिया हैंडल्स की लगातार निगरानी कर रही है। डीसीपी सेंटर रोहित राज बीर सिंह ने बताया कि 400 ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स की निशानदेही की गई है और उन्हें ब्लॉक किया गया है, क्योंकि वो एआई के जरिए तैयार करदा और दूसरी मनगढ़ंत खबरें फैला रहे थे। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बताई जाती है। वहां 1,15,000 से ज्यादा लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। खबरों में कहा गया है कि शिवसागर और जोरहाट जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मजीद 14 अफराद के हलाक होने की खबर मिलने के बाद सैलाब से वाबस्ता वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 हो गई है। धेकू, दिसांग और धनसिरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सूरत हाल और बिगड़ गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। आफात से निपटने वाली टीमें और जिला हुक्काम मुतासर इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। जनाब सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि वजीर आजम ने सैलाब की तबाहकारियों, इमदादी कामों की पेशरफ वगैरह के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने बाज़ाबादकारी, तामीर नौ की कोशिशों और इमदादी कामों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद बचाव और इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 265 तालुका में बारिश हुई है। रियासत के इमदाद से मुतालिक कमिश्नर ने बारिश से वाबस्ता वाकयात में 5 अफराद की जान तलफ होने की तस्दीक की है। खबरों के मुताबिक भारत के साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। हुक्काम ने बचाव और इमदादी काम तेज कर दिए हैं और मुतासर इलाकों के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। सिक्किम के नामची जिले के फामटम गांव में आज मिट्टी के तोदे खिसकने के बायस 2 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। नामची के एसएसपी ने कहा है कि लाशों को निकाला जा रहा है। 2 जख्मियों को इलाज के लिए नामची जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 खसूसी अदालतों को नामजद किया है, जिनमें इम्तिहानात का पर्चा लीक होने और मुतल्लिका बदनामियों के मामलात की तेजी से समाअत की जाएगी। ये हिदायत दी गई है कि फर्द जुर्म दाखिल होने के 3 महीने के अंदर अंदर समाअत मुकम्मल की जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की जिला और एडिशनल सेशन अदालतों को खसूसी अदालत नामजद किया है। इससे पहले मरकज ने इम्तिहानात से मुतालिक बदनवानियों के मामलात की जल्द समाअत का यकीन दिलाया था और वजीर आला मोहन यादव ने भी 4 शहरों में खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन मुअत्तर रहने के बाद आज से ये यात्रा शुरू हुई है। हुक्काम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके और यात्रा खुश असलूबी से जारी रह सके। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि वो इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। ओडिशा का पवित्र शहर पूरी आज शाम सालाना रथ यात्रा की सबसे शानदार और अहम रसूमात में से एक सुनहरी लिबास की तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को शानदार सुनहरी लिबास और जेवरात से आरास्ता किया जाएगा। मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंदों के ग्रैंड रोड पर जमा होने की तवक्को है ताकि वो इन मुकद्दस देवी देवताओं की रूहानी शान शौकत का रूह परवर और पुरशी को दीदार कर सकें। हमारे नामनिगार ने कहा है कि इस अजीम मजहबी तकरीब के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। पवित्र शहर पूरी इस वक्त अकीदत, रूहानियत और जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस की मुनासिबत से 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज द्रास में हुआ। इन तकरीबात का मकसद ऑपरेशन विजय में भारत की फतह को याद करना और 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना है। इस मौके पर युद्ध संस्मारण प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑपरेशन विजय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहादुर फौजियों को खिराज तहसीन, शहीदों के अहलखाना से मुलाकातें और जंग में शामिल साबिक फौजियों के तजर्बा शामिल थे। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल विजय दिवस की मरकजी तकरीब की क्यादत करेंगे और करगिल जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ऐसे में दरास में वाकई करगिल जंगी यादगार एक शानदार और पुरशिको मंजर पेश कर रहा है।
भारत की स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की खिलाड़ी को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर

0: में जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साल राहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2005 में जोशना चिनप्पा ने यह कामयाबी हासिल की थी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इसराइल के दरमियान मुजवजा आजादाना तजारती माहदे के बारे में गुफ्तगू का दूसरा दौर खत्म हो गया है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल नाजुक बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा अफराद ने इमदादी कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। गुजरात में बारिश से मुतासर इलाकों में बचाव और इमदादी काम जोर शोर से जारी हैं। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने 170 महसूर अफराद को बचाया है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से 6 दिन से ये यात्रा मुअत्तल थी। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका आज के इस अंक में, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख नदियों की, राजस्थान के प्रमुख संतों की, नशे के दुष्प्रभाव की, राजस्थान की विशेष जानकारी की और साथ ही बात करेंगे आज के इतिहास की। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सन 1969 में बनी फिल्म आराधना के इस गीत से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

मित्रों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब भी नहीं समझता।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हमारे देश भारत की मुख्य नदियों की, जैसे सिंधु नदी। श्रोताओं, ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, पश्चिम की ओर बहते हुए ये भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। भारतीय क्षेत्र में सिंधु नदी की लंबाई लगभग 1,114 किलोमीटर है। सिंधु नदी का एक तिहाई हिस्सा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है और बाकी हिस्सा पाकिस्तान में है। गंगा नदी। मित्रों, गंगा नदी अपने बेसिन और सांस्कृतिक महत्व

दोनों ही दृष्टियों से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। यहाँ इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा में कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिनमें यमुना, घाघरा, कोसी और गंडक प्रमुख नदी है। यमुना नदी,

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संतों की, जैसे संत जाम्बो जी। मित्रों, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर गांव के पवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के घर में हुआ था। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात ये गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग व हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। श्रोताओं, 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया था। इनके जीवन और विचारों पर आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश भी दिया। जीव कल्याण और वृक्षों की रक्षा

अर्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जांबोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जांबोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर प्रमुख हैं। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया और ये स्थान आज मुकाम कहलाता है। वर्ष में दो बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। संत जसनाथ जी। साथियों, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर जिले में हुआ था। इन्हें हमीर जी जाट और रूपांदे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का भी घमंड चकनाचूर किया था। इन्होंने राव लूणकरण को बीकानेर का राजपाट पाने का वरदान भी दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि भी दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी व जांबोजी का परस्पर मिलन हुआ था। इन्होंने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि भी ली थी। इनके उपदेश सिंबुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। कतरियासर में वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। तो दोस्तों, बातें तो चलती रहेगी, लेकिन अब समय एक गीत का है। लीजिए सुनिए फिल्म राधा का संगम का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख संतों की, जैसे संत दादू दयाल। श्रोताओं, राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले संत दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी को माना जाता है। वृदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे और दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहां से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। यहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। मित्रों, दादू ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया था। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। गरीबदास, मस्कीनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजब और माधोदास संत दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। मीराबाई, दोस्तों कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष बाद ही पति की मृत्यु हो जाने से ये तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। श्रोताओं, मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। इसीलिए विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यही थी कि इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया है। तो साथियों, ये थे राजस्थान के प्रमुख संत। युवाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म लगान का ये गीत।

0: टैक्सी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। देश की प्रगति और विकास युवाओं की शक्ति पर निर्भर करता है। यदि युवा शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक होंगे तो देश उन्नति करेगा। लेकिन आज के समय में नशे की बढ़ती आदत युवाओं के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थ युवाओं को धीरे धीरे शारीरिक और सामाजिक रूप से कमजोर बना रहे हैं। इसीलिए नशा मुक्ति आज समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। साथियों, युवाओं में नशे के कई कारण हैं, जैसे गलत संगति का प्रभाव, तनाव और चिंता के कारण, फिल्मों और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण और जागरूकता की कमी के कारण आज युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है। नशे के कारण कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, पढ़ाई और करियर पर असर, परिवार और समाज में समस्याएं और आर्थिक नुकसान भी शामिल हैं। श्रोताओं, नशा मुक्ति के कई उपाय अपना सकते हैं, जैसे शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाकर नशा कम किया जा सकता है। अच्छी संगति से, योग व खेल के अभ्यास से, परिवार के सहयोग से और नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त नियंत्रण से नशे को कम किया जा सकता है। मित्रों, नशा समाज और युवाओं दोनों के लिए हानिकारक है। ये केवल व्यक्ति का ही नहीं जबकि पूरे परिवार और देश का नुकसान करता है। इसीलिए हमें मिलकर नशा मुक्त समाज बनाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बना रहेगा। तो साथियों, चर्चा और भी करेंगे, अब समय एक गीत का है। लीजिए अब सुनिए फिल्म ऐतराज का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारी की, जैसे ताल छापर अभयारण्य। श्रोताओं, ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलियां करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरण की ये सेंचुरी छापर गांव में है, जो चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरणों का ये अभयारण्य खुले मैदानों, बड़े पेड़ों और लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी और जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। ख्वाजा साहब की दरगाह। मित्रों, ये दरगाह अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर में सर्वाधिक देशी और विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। इस दरगाह में तीन मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार निज़ाम दरवाज़ा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया है। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा शाहजहाँ दरवाज़ा बनवाया गया और सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया है। उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी कढ़ाई में 4,800 किलो और छोटी देग में 2,240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है, जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व। दोस्तों, ये अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का को 1 नवंबर सन 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। सन 1978-79 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। इसका वन क्षेत्र 1,203 किलोमीटर में है। बाघ के अलावा यहाँ नील गायें, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बंदर भी पाए जाते हैं। किराड़ू मंदिर। मित्रों, थार के रेगिस्तान में

चमकते लाल मानक जैसे मंदिर बाड़मेर शहर से 35 किलोमीटर दूर हैं। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीक नकाशी का काम इन मंदिरों को विशिष्ट बनाता है। इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यहाँ 5 मंदिर हैं जिनमें सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। तो श्रोताओं, ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब चलते हैं एक बार फिर मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1813 में भारत के कोलकाता में हुगली नदी पर पहली नाव दौड़ प्रतियोगिता भी हुई थी। 25 जुलाई के दिन ही सन 1978 में विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म भी हुआ था। आज ही के दिन सन 1984 में श्वेतलाना सावित्राया अंतरिक्ष में चलने वाली दुनिया की पहली महिला भी बनी थी। मित्रों, 25 जुलाई के दिन ही सन 2007 में प्रतिभा पाटिल ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ली थी। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। आज ही के दिन सन 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच 46 वर्ष से चल रहे युद्ध का समापन हुआ था। 25 जुलाई के दिन ही सन 1837 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था। आज ही के दिन सन 1948 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड बनाया था। तो साथियों, युवाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म चाइना गेट का ये गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। संध्या के 6 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की, 6:05 पर। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में

संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जानकारी, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं, बागवानी में सामयिक कार्य, कीटनाशकों का छिड़काव करते समय सावधानियां, उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधित जानकारी भी बताई जाएगी। आज चौपाल पेश करेंगे भारत भूषण।

भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 7:45 पर रात 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म की जानकारी और कुछ गीत।

स्पोर्ट्स केन, ये कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। समाचार संध्या आप सुना करते हैं रात्रि 8:45 पर। रात 9:15 पर सुखम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा चंद गजलें। विज्ञान भारती राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका, यह कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा।

श्रोताओ, रात्रि 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। हमारी प्रसारण सभा रात्रि 11:10 पर समाप्त होती है और प्रातः 5:50 पर प्रातःकालीन समय के साथ आकाशवाणी संकेत ध्वनि के साथ आरंभ होती है। कल प्रातः 6:10 पर कार्यक्रम सुनिएगा वंदना, 6:45 पर आप सुना करते हैं चिंतन। कार्यक्रम विवरण आप सुना करते हैं प्रातः 6:50 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम, उनका विवरण और प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

ऑल इंडिया रेडियो दा सिराई की प्रोग्राम है। सारे भाना भरावां को हरजीत कौर दी प्यार भरी नमस्ते। आज मैं कुछ बातां कुछ गीत प्रोग्राम विच बई चंगे चंगे गीत घिन के हाजिर हां। प्रोग्राम दे शुरू विच मैं तुहां को सुनवेंदी पई हां एक प्यार भरा गीत। ए प्यार जड़न थीवेंदा है ना, बस थीवेंदा है, प्यार कीता नहीं वेंदा। नजदीकियां प्यार विच बदल वेंदियां हैं ता दूरियां आपे मिटवेंदियां हैं। एक बहु प्यारा गीत इस प्यार तू चेते आंदा पिया है। प्यार दे भुलेखे किन्ने सोने सोने खा गए, दूर दूर जांदे जांदे नेड़े नेड़े आ गए। ते चस घिनो इस गीत दी मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां विच। ए गीत असां गिद्दा है फिल्म गुड्डी तू।

वाला पर खाली हाथ झूलेंदा। कंजूस आधा है, गोश्त किडे है, पुत्र अगू आधा है। मैं गोश्त आले को आखा गोश्त देवन वास्ते, ओ आधा हुणे आखा इंझा उमदा गोश्त देवा जिवे मक्खन। मैं सोचा हिंदे कोलू चंगा मैं मक्खनी गिनचा। वल मैं गया स्टोर ते, मैं आखा मक्खन दे दियो। हूँ आखा मैं तुहा को इंझा उमदा मक्खन देसा जिवे शहद होवे शहद। मैं सोचा हिंदे कोलू चंगा मैं शहद ही गिनचा। मैं आखा चलो शहद ही दे दियो। हुन्ने आखा एझा शहद देसा जिवे साफ सफाक पानी। वल मैं सोचा पानी ता मेरे घर विच ही बतेरा है, हुन पियो कंजूस के कहंदा है शाबाशी है मेरे पुत्र, हिक दी तू जरूर मेरा ना रोशन करे स, पर हिक गलती कीती है ताए, हिक दुकान तू दूजी दुकान विच वंजन विच तेरी चप्पल घेस गई हो सी, ते पुत्र भी ता कंजूस पियो दा है ना। आधा है इतना पागल काई ना मैं, चप्पल ता मैं मेहमान दी पा गया हाँ। तो अनु भी हसी आई ना। हुण मैं तुहा को सुनवेंदी पई हां एक बहु वधिया गीत जसबीर जस्सी दी आवाज विच।

विशेष समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे, विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की बैठक हुई। इसके बाद सीजेपी की ओर से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई और प्रदर्शनकारियों से तत्काल प्रभाव से वापस लौटने का आग्रह किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास तथा आशुतोष रांका से लंबी बातचीत की। इसके बाद हुई प्रेस वार्ता में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है।
1: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर इन ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विड्रॉ।
0: श्री नड्डा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नीट पेपर लीक मामले के प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है, उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधारों पर मंथन होगा।
2: कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने त्याग पत्र में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन की घटनाओं से उनका मन दुखी था। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और वे युवाओं को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया ताकि जंतर मंतर और देश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसका फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं उठा सकें। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। सरकार ने पुनर्परीक्षा की नई तिथि की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए नए कानून पर मोहर लगाई है, जिसमें दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए 3 महीने में सजा सुनाने का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम छात्रों के हित में है और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। सहकारिता के मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी की आज से जयपुर में शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। श्री शर्मा ने HCM रीपा से इस सेवा को शुरू किया। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक भी मौजूद रहे। भारत टैक्सी आधुनिक, पारदर्शी और लोगों के लिए लाभदायी परिवहन व्यवस्था की दिशा में अहम पहल है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर माहौल ने आज जयपुर में चरक भवन में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात की। लोकभवन में हुई इस भेंट में दोनों ने देश और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अंग प्रत्यारोपण सहित कई महंगे इलाज मुफ्त मिल रहे हैं। मां योजना में अब तक 2600 से ज्यादा मरीजों को राजस्थान और अन्य राज्यों में अंग प्रत्यारोपण तथा दूसरे इलाज का लाभ मिला है। इन उपचार पर

0: तक 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। योजना के तहत जयपुर में 1200 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। इसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किए गए। योजना में 107 मरीजों ने राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों के अस्पतालों में इलाज करवाया। गौरतलब है कि अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपचार पूरी तरह कैशलेस है और मरीज को इलाज के लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ती। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी देश भर के 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने की 4 से 30 तारीख तक दो चरणों में हुआ था। प्रतिभागियों का चयन एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। इसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 27वां करगिल विजय दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन ऑपरेशन विजय के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का पावन अवसर है, जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों से मुकाबला कर देश की संप्रभुता की रक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल संघर्ष की शुरुआत मई 1999 में हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर करगिल, द्रास और काकसर क्षेत्रों की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई वाली दुर्गम चोटियों, बर्फीली ठंड, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच जीत हासिल की। करगिल विजय दिवस पर समूचा राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर वीरों को नमन करता है। इस मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आज 2 दिन के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर मुख्य करगिल विजय दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई के बीच 5 जिलों में अत्यधिक, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच सरहदी जिले जैसलमेर में आज सुबह से ही रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। बाड़मेर जिले के चौहटन, बीजासर, नवातला और अन्य क्षेत्रों में बरसात से कई जगह पानी भर गया और कच्चे मकान ढह गए। वहीं कल श्रीगंगानगर और सिरोही जिले में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। आबूराज में 20 सेंटीमीटर पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। कल उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि ज्यादातर हिस्सों में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आम जन को जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एंटी लार्वा अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर

0: लोगों को साफ सफाई रखने तथा जल भराव रोकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. प्रदीप असवाल ने मौसमी बीमारियों में बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने की अपील की है।
1: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों, जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है, इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं, विशेषकर इस मौसम के लिए। मानसून का आनंद लें बहुत जरूरी है लेकिन वो आनंद लगातार रहे इसके लिए सजग रहें, चिकित्सा कर्मियों की बात सुनें और समय रहते चिकित्सक को दिखाएं, विलंब नहीं करें।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यहां शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। श्री राठौड़ आज जगतपुरा शूटिंग रेंज में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में बोल रहे थे। उन्होंने प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 23 जुलाई से शुरू हुए और 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच हुई बातचीत के बाद सीजेपी का आंदोलन समाप्त, प्रदर्शनकारियों से तत्काल वापस लौटने की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, कहा युवाओं के हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से भी बातचीत करेंगे। और प्रदेश में इस सीजन में अब तक कम बारिश हुई, 20 जिलों में सामान्य और 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अविनाश मल्होत्रा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त हस्तांतरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम मिनी सचिवालय में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से योजना की 23वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। कार्यक्रम में जिले के 1,45,114 लाभार्थी किसानों को 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी, जवान, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। अलवर शहर में सिंचाई विभाग द्वारा 3,34,00,000 रुपए की लागत से बने भाखेड़ा एनिकट का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने इस एनिकट को जनता को समर्पित किया। इस एनिकट से जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि होगी और शहरवासियों के लिए एक नया पर्यटन स्थल मिलेगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने नटनी का 12 से जैसमन झील तक करीब 36 करोड़ रुपए की राशि से नहर पक्कीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। नहर पक्कीकरण के कार्य से जैसमन झील तक अधिक पानी पहुंचेगा तथा भूजल स्तर में वृद्धि होगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए लाभ मिलेगा। अलवर में नीट यूजी परीक्षा 2026 का आयोजन जिले के 27 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। जिले में कुल 9,731 अभ्यर्थियों में से 8,945 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अलवर जिले में 3,089 वरिष्ठ नागरिकों ने निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किए। अलवर के कलेक्ट्रेट सभागार में इसके लिए लॉटरी निकाली गई जिनमें 1600 यात्रियों को निशुल्क यात्रा के लिए चयन किया गया। 181 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा के तहत तथा 1489 यात्री रेलगाड़ी के जरिए तीर्थ यात्रा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का 28 जून को जिला मुख्यालय पर आयोजन हुआ जिसमें 14,770 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा जिला मुख्यालय पर 53 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई।

0: राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 2,75,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो मुक्त भारत का संदेश दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर अलवर में NTCA द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में टाइगर रीइंट्रोडक्शन, अवसर और चुनौती विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है, लेकिन बफर जोन खुला है। इस एरिए में 2 पर्यटक जोन के लिए 19 जिप्सियां लगाई गई है जो पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराएगी। शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों अलवर के एक दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने रैणी तहसील में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईश्वाना के नवनिर्मित भवन तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पिनान के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने विभिन्न पंचायतों और ग्रामीण इलाकों का औचक निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अलवर जिले के नारायणपुर के कोलाहेड़ा की बावड़ी की ढाणी निवासी वायुसेना के जवान विक्रम पायला का ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया। सेना के वाहन से उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ पैतृक गांव पहुंचा। जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जवान विक्रम पायला को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 196 वर्ष पुराने ऐतिहासिक इंद्र विमान पर निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अलवर जिला कलेक्टर की ओर से 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। इसी के साथ अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत, पाछे नौजवानों रो आंदोलन खत्म, प्रदर्शन करण वालों तुरंत पाछा जावण री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दिनो, कहो नौजवान आरा हित माए फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम माए शामिल भेवण वाला सा गई बातचीत करेला। और प्रदेश माए ई चौमासा माए हाल ताई कम में वर्षियों, 20 जिला माए सामान्य और 15 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, नीट परीक्षा पेपर लीक मामला माए नौजवाना कानियों चलाई चियो आंदोलन खत्म फेवन रो ऐलान करतियो चियो है। नई दिल्ली माए आज खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान कॉकरोच जनता पार्टी रा प्रवक्ता आशुतोष रांका कहो कि सरकार वारी मांगा मान लेनी है।
2: हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर इन ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। तो देन वी वुड लाइक टू ऑल्सो विथड्रॉ।
1: इनु पहले केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली में तीजा दौर री मीटिंग भी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, CJP रा प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका सागे लंबी बातचीत कीनी। इन पाछे CJP आंदोलन खत्म करण रो ऐलान करता थका प्रदर्शन करण वालाओं पाछा लौट जावन री अरज कीनी। श्री नड्डा खबर नवीसा ने बतायो कि नीट पेपर लीक मामला माए प्रदर्शन करण वाला रे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जावेला। वह कहो कि नीट पेपर लीक रा पीड़ित परिवार रा प्रति सरकार री पूरी सहानुभूति है, अरवाना नियमा रे मुताबिक मुआवजो दियो जावेला। नड्डा कहो कि शिक्षा व्यवस्था माए सुधारा रा बारा माए विचार करियो जावेला।
3: कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो

0: हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे दे दिनों है। वह आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफो सौंपण री जानकारी दीनी। मारा इस्तीफा माए श्री प्रधान मांडियो कमारी परीक्षा माफिया रे कारण किणी विद्यार्थी री जिंदगी खराब नी वेवन देवन री कोशिश रही। श्री प्रधान मांडियो का लाडला 10 दिन माए देश माए विद्यार्थियों का न्यू रीट परीक्षा पेपर लीक रा मामला माए करया जा रहा प्रदर्शन वह दुखी है। वे मांडियो का नौजवान भारत रो भविष्य भेवन सागे नुओ और विकसित भारत बनावन वाला है जो देश रे असली ताकत है। श्री प्रधान आगे मांडियो का जंतर मंतर सामी और आखा देश माए लाडला दिना उपजा हालातों विद्यार्थियों रो भविष्य कानूनी दाव पेच माए उलझन बचावन और वारो भगत पढ़ाई माए लगार करियर बनावन माए कामयाबी हासिल करन री मंशा सागे वे प्रधानमंत्री ने इस्तीफो भेज दिनो है। वह कहो का नौजवान देश सब मोटी ताकत है और वह इन भ्रम राकू चक्र माए नी फंसवा देवेला। श्री प्रधान कहो के वह इस्तीफा ई कारण दीनो ताकि जंतर मंतर सामी और देश माए जो हालात बनिया वानो फायदो देश विरोधी ताकतां नी उठा सके। ई बीचे केंद्र सरकार पेपर लीक रा मामला रोकण सारू नुओ कानून बनाउन ते किन्नो है जिन्हें तेत दोषियां ने फास्ट ट्रैक अदालत रे जरिए 3 महीना माए सजा सुनावन रो प्रावधान है। इन तेत दोषियां ने 10 साल ताई री कैद और 10 करोड़ रुपए ताई रा जुर्माना री सजा दी जा सकेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहकारिता रा आधार उच लाई चावन वाली भारत टैक्सी री आज जयपुर माए राखी जा कार्यक्रम माए शुरुआत कीनी। ई मौके केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश रा सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ई मौजूद हा। भारत टैक्सी जनता सारू आवन जावन री साफ कोई सागे फायदेमंद व्यवस्था री पहल है। इन रो मकसद मुसाफिरा ने आवन जावन री हिफाजत सागे किफायती भरोसेमंद और आसान सुविधा मुहैया करावन सागे गाड़ी चलावन वाला नई माली तौर मजबूत बनावनो है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना रा तहत गंभीर बीमारियां रा मरीजा ने उपतु अंग लगावन समेत कई महंगा इलाज मुफ्त मिल रहा है। मां योजना रा तहत हाल ताई 2,672 मरीजा ने राजस्थान और दूजा राज्य माए अंग प्रत्यारोपण और दूजा इलाज रो फायदो मिलियो है। इमाथे हाल ताई 120 करोड़ रुपये बत्तो खर्चो करी चियो है। योजना रा तहत जयपुर माए 1,232 दूजी किडनी लगाई ची। ईसा गई कान माए कॉकलियर इम्प्लांट खून रो बोन मेरो ट्रांसप्लांट और हृदय और फेफड़ाई दूजा लगाई चिया। योजना रा तहत 107 मरीजा ने प्रदेश में बाहर दूजा राज्य रा अस्पताल माए इलाज मुफ्त मिलियो। ध्यान जोग है कि उपतु अंग लगावन रा इलाज माए नकद रकम री जरूरत नहीं वह है और मरीज ने इलाज सारू कोई खर्चो नहीं करनो पड़े है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनल AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। ईसा गई AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे ही ओ कार्यक्रम प्रसारित करियो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल सिंजा विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 माए शामिल हुए वन वाला 432 लोगों सागे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए बातचीत करन रो कार्यक्रम है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लाडला महीना री 4-30 तारीख बीच है दो दौर माए राखी चियो हो। इन माए सवाल जवाब री ऑनलाइन होड़ रे जरिए 3,00,000 नौजवान शामिल फिया हा। 27वां कारगिल विजय दिवस

0: ਕਾਲ ਮਨਾਇਓ ਚਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਦਿਨ 1999 ਮਾਏ ਵਿਆ ਕਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਮਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੈ ਰਾ ਅਮਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਣ ਸਾਰੂ ਮਨਾਇਓ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਕਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਮਾਏ ਭਾਰਤ ਰਾ ਰਣ ਬਾਂਕੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੋ ਕਰ ਅਰ ਦੇਸ਼ ਰੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਨੀ ਹੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
1: भारत और पाकिस्तान बीचे करगिल री लड़ाई मई 1999 माई वी जद पाकिस्तानी फौजी और घुसपैठिया नियंत्रण रेखा पार कर करगिल द्रास और काकसर हल्का री चोटिया माथे कब्जो कर लीनो। भारत री फौज जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता था का 16,000-18,000 फीट री ऊंचाई वाली मुश्किल चोटियां बर्फीला तूफान और ठंड ऑक्सीजन री कमी और दुश्मन री लगातार गोलाबारी पीछे जीत हासिल कीनी। कारगिल विजय दिवस रे मौके पूरो देश मायड़ भूमि री हिफाजत करण सारू जान री बाजी लगा देवण वाला अमर वीरा ने नमन करे है। ई मौके द्रासरा कारगिल युद्ध स्मारक माथे आज दो दिन रा खास कार्यक्रम शुरू ब्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल समर स्मारक माथे शहीदा ने श्रद्धांजलि देर कारगिल विजय दिवस रा खास जलसरी अगुवाई करेला। सलेहा गाजी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: अरबे मौसम प्रदेश में ईं चौमासा रे दौरान हाल तक केवल फलौदी जिला में आई असामान्य बारिश हुई है। जल संसाधन विभाग री ओर मिली जानकारी रे मुजब 1 जून नु आज तक 5 जिला में आई घनी 20 जिला में सामान्य और 15 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। इन बीच सरहदी जिला जैसलमेर में आज सवारे हुई रुक रुक कर छाटो छिटको फैर रो है। बाड़मेर जिला रा चौहटन बीजासर नवातला और दूजा हल्का माए भी बरसात हूँ कई ठोड़ा पानी भर गयो और कच्चा मकान ढस गया। काल श्रीगंगानगर और सिरोही जिला माए खटे खटे घनी जोरदार बारिश हुई। आबूराज माए 20 सेंटीमीटर पानी बरसियो। बरसात री रुतमाए डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया समेत नरी नरी मौसमी बीमारियां बचाव सारू जनता माए जाग चकाई जा रही है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओरू एंटी लार्वा अभियान ने चलायो जा रियो है। विभाग रा अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप असवाल आकाशवाणी समाचार सागे खास बातचीत रे दौरान बुखार या दूजा लक्षण नजर आवन री सूरत माए तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र माथे जाँच करावन री अरज कीनी।
2: हमने सभी जिलों में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से हमने सभी जिलों में डायरेक्शन जारी की गई जो इस मौसम में मच्छर जनित रोगों जल जनित रोगों और श्वसन रोगों के संबंध में क्या क्या सावधानी हो और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसा कि मैंने बताया आशा और एएनएम है इनको भी आमुखीकरण एक बार हर साल की तरह फिर से हम करते हैं। हालांकि ये निरंतर काम होता है लेकिन फिर भी कहीं कोई चूक नहीं हो जाए इसके लिए हम बार बार आमुखीकरण करते हैं विशेषकर इस मौसम के लिए।
0: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी बीच भी बातचीत पाछे नौजवान आरो आंदोलन खत्म प्रदर्शन करन वालों तुरंत पाछा जावन री अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफो दीनो कहो नौजवान आरा हित माए फैसलो लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। और प्रदेश माए ई चौमासा माए हाल ताई कम में बरसियो 20 जिला माए सामान्य और 15 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन स्टी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण परिवार सुने अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम। ले आज तो नवीन भाई श्रीपाल भाई आ रहे। राम राम सा।
1: राम राम सा श्रीपाल भाई जी, देखो अपने सगे आज गुरु भाई जी, देखो खेतिया आदमी है
0: बिल्कुल है
1: तो आज अपन ऐसे बहुत ही ज्ञान की बात सीखने मिलेगी।
2: बिल्कुल है। बातचीत तो सगला ने रामा श्यामा के सगे आप करांगा ही नवीन भाई। एर रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान की बात तो क्या, ज्ञानी से ज्ञानी मिल्यार करी ज्ञान की बात,
0: बिल्कुल सा।
2: यार मूर्ख से मूर्ख मिल्या का मुका का लात। पा आपने जी की कहावत है नहीं?
1: तो अपन मूर्ख कह रहे हैं
2: नहीं नहीं मैं
0: ए कह
2: कह
0: के
2: रहे।
0: आ तो कहावत है, खेत उगती
2: हाँ
0: पहल पोती, के भाई
2: बिल्कुल
0: ज्ञानी
2: बिल्कुल।
0: आदमी आ रहे हैं जन ज्ञान की बात कर
2: हाँ
0: सा।
2: ज्ञानी आदमी आगे भेड़ा बैठ से ना ज्ञान की बात
1: सही
2: उसी।
1: बात है जी। मैं देखो धन कहे नहीं, अब आते देखो इतनी बढ़िया बात बता दी अपन ने।
0: अब किसानी हम के है श्रीपाल जी, के दिनों दिन खर्चा तो जावे बद्या, एर आमदन बीती बीती एर घटे भले है, तो
2: बिल्कुल
0: आप आ चर्चा कर सा कोई इसी विधि के ऊपर के अपनी आमदनी जी की है खेती के साके साके इसो के काम करा के आमदनी बढ़ जाए। बा किसान भाई थारसू पूछ से यार बतावांगा, पर सबसे पहला माने सदाल तरिया सुना दियो पहला भजन।
1: भजन पहले जरूरी बिंग, बाद कोई बातचीत कर सा।
2: तो लो सा नवीन भाई थारी एर गुरु भाई की फरमाइश करा पूरी सुनो ओ भजन।

0: सुनो गीत नवीन भाई, आपां जिया शुरू में बात करी कि आजकल जी की किसानी है भिगमा, दिनों दिन जी की है आमदनी घटन लाग रही है और खर्चा जी कह वह बधे वगै,
1: देखो,
0: तो
1: खर्चा तो बुरुबाजी बदेगा, पर आपने कि किसान ने सोचना पड़सी कि भाई आपने जी की पुरानी लीक चल है, बीच थोड़ो हटनो पड़सी।
0: तो बिना हटन वास्ते ही कोई ईसो साधन जी को आपने किसानी के सागे सागे ही बीती खेचल में बीतो ही टाइम लगावा।
1: केंचुआ की खाद हो गई नहीं, बात हरी देख रही है।
0: ना देखड़ी को नहीं सुनेड़ी जरूर है, बड़ी लाभदायक खाद हो यार। कह कह बीन ने जे किसानी में आपा बरता तो आपा जैविक खेती का नहीं एक कदम बढ़ावा, लेकिन बा बने की है के भी लाभ है बिंग बारे में प्रकाश डाल दो, जी को किसान जी को है वो सागे ही सागे की इनकी करे रखे।
2: आ केचुआ की खाद की बात करी नवीन भाई, बताइए गुरु भाई भी थे जिक्रो करियो, तो आ केचुआ की खाद और एक जगह बर्मी कंपोस्ट जगह बोले है बा
1: देखो
2: नरी नरी वह के इन्हीं
1: देखो,
2: कहे।
1: हैं बुरु भाई, मैं क्यों पढ़े लिखे आदमी है, पर बात देखो किसी करे है। अरे बिन नहीं बोले वर्मी कंपोस्ट और केंचुआ की खाद एक ही हुआ है।
0: तो कुकर तैयार हुए।
1: आ देखो, एक केंचुआ हुआ है वो जो सांप का छोटो रूप मान लो थे,
2: हाँ बे छोटा छोटा
1: छोटा
2: जीव सा
1: छोटा,
2: बनी पतला
1: हाँ
2: पतला में निकल
1: हाँ
0: सी वे
1: एमए में घड़ा ही निकला है।
2: बरसात के
1: और
2: मौसम
1: आपने
2: पे।
1: आपा सोचा कि खराब है, खराब है ना, मार दे और कर दे और की कोनी, ए मिट्टी वास्ता जीवन दान है, ठीक है नहीं।
0: बच्चे
1: ए मिट्टी में जावेगा और जितो भी ऑर्गेनिक कचरो है, ऑर्गेनिक कचरो समझो थे, पत्ती है, कोई डंठल है,
0: खरपतवार हो गई
1: खरपतवार है, बे नीचे दबगी मान लो, बना एक खासी।
2: जिकी अपने माटी के मान रेड़ा कचरो पड़ गया
1: हाँ,
0: भी ना।
1: अब वो कचरो जो वो सीधो तो पौधों का काम आवे, नहीं वो खासी वो खागा बेना अपशिष्ट के रूप में निकाल देसी। तो अब आ एक तरह मान लो केंचुआ की गोबर खाद है, समझ गया।
0: हाँ तो मैं ही सुनी के इंगमा खरे के टप्पे बाद में वो अपशिष्ट

0: जी को निकले ना, मिग्मा
1: हाँ
0: के 16 पोषक तत्व है।
1: के बात है भुरुबा जी, तो पढ़ी तो है, बात तो है, पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, मैंगनीज, सूक्ष्म पोषक तत्व है नी, बेबी बिंग अंदर पाई
0: अरे
1: जी,
0: बहुत ही जरूरी भी है।
1: बहुत जरूरी है। सिर्फ पोषक तत्व की बात को नहीं, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ावे, ठीक है, और मिट्टी के अंदर जी की वायु है बेगु संचार बढ़ावे, ठीक है, लाभकारी जी का छोटा सूक्ष्म जीव हुआ है बांगी संख्या बढ़ावे, और रासायनिक उर्वरक की जी आवश्यकता है बिन्न कम कर दे, तो केंचुए खाद को इतना जी का

0: कंपोस्ट बनाने की विधि है। इनका लाभ तो नवीन भाई आपने बता ही दिया कि देखिए कोई जिंक है कोई और है, देखा अभी यहाँ तत्वाना
1: सूक्ष्म
0: नाम लिया
1: तत्व है
0: सूक्ष्म
1: जी
0: तत्व है, देखा आप ऊपर उगेरा तो केचुआ की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद जमा ऐसा सारा गुण हुआ है, तो इन बनाने की जो विधि है बा थे किसान भाई ने बताओ।
1: जी की मेरे ज्ञान में बिग मत ही है भी कचरे की जी की खाद तैयार अपना करा बिग मऊ कांच है पत्थर है धातु है ऐसा कोई जी का टुकड़ा जी का नुकसान करे जी ने वह पहला तो काट दिया। और फिर सबसे पहला आप के करा के 3 फुट को जी को चौड़ो और जरूरत के अनुसार लंबाई जी थी अपनी जी जगह अपने जमीन पर मक्को बाजरो गन्नो भूसो जितना भी अवशेष है 3 इंच की मोटाई तय तय लगा लिया। बिगे बाद में नीम की पत्तियां जी अपने कन उपलब्ध है तो बांगो एर जिया चावल की जी किया अपने पराली
0: प्राली
1: बिग
0: बोले
1: रहा
0: हाँ
1: बा बी हिसाब शू आप जी की 3 इंच की परत है बिगे ऊपर गोबर की खाद रेड़ के यानी गोबर वह ठंडो भाई एकदम गर्म गोबर ना हो थोड़ो की सड़ेड़ो
2: आ
1: हो
2: आ बात है नहीं, आ बहुत जरूरी है। कई बार देख हाँ पा कि किसान भाई है नहीं
1: आके केचू एक में मर जाए
2: मर जाए के
1: क्योंकि
2: जो
1: बा गर्मी बाने सहन
2: हाँ
1: को नहीं हुआ
2: तो गर्मी बना सहन को नहीं आ वास्ते तापमान जिको है नहीं वो 20 डिग्री जिको है ना चोखो लागे, और ज्यादा से ज्यादा नहीं मानो तो 30 डिग्री से नीचे नीचे रखो
0: नीचे नीचे रखो
2: ठीक है नहीं
1: यानी ठंडो गोबर
2: जी गर्म
1: जी
2: होगा नहीं केंचो मर जाएगा
0: ये तो व्यू गुरु भाई
2: क्योंकि
0: का
2: भाई छाया रखनी बहुत जरूरी है।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: आई
1: प्रकाश भी कौन
0: बिल्कुल
1: सा
0: बिल्कुल आई बात है
1: हाँ
0: मैं कहना चाहूँ कि गुरु भाई जी की अभी बताने लग रहे किसान भाई है ना कि साहब गड्ढो खोद गए नीचे जगह परत है कचरे की लगा लिया
2: हाँ
0: अभी ऊपर गोबर रेड़े तो लेकिन आज जगह देखिए है बा छाया में रखनी
2: छाया में
0: चाहिए
2: होनी
0: धूप नहीं लगनी
2: चाहिए,
0: चाहिए
2: और छाया वास्ते मान लो कोई कह दे मार्ग जगह को नहीं पेड़ के नीचे लगा लो, पेड़
0: बिल्कुल
2: नहीं है तो चार या डंडिया लगा के ऊपर वो ग्रीन से ऊपर दो हरे रंग
0: हाँ
2: हो
0: वो लगा दो
2: वो लगा दो अरबे पे नहीं जैत माटी और गिरनी पड़े है भूरू भाई जी मैं आगे बताना रहा था शायद माटी वो
1: मट्टी तो बाद की बात है पहला तो बाजी की गोबर है वो देखे हम तो ठा पड़े को नहीं भी गर्म है ठंडो है
2: हाँ
1: बिग मापा 5-6 दिन बाद में हाथ गाल के भी देख सका जिन्हें
2: ठीक है
1: पलट भी सका भी
0: बिल्कुल
1: कस्सी के सहायता हूँ पलट लिया हाथ तुम सीधा पलट लिया तो बिग मा के गोबर जी को है बिग तापमान एकदम ठीक हो जी
2: एक
1: सका।
2: बात और बताऊंगे गोबर ने ठंडा करने को तरीको भी हुआ है। अब जहाँ थे कठो गोबर ले गए मान लो ट्राली भर गए बेना थे जमीन पे घेर दियो पक्की जगह और बिंग ऊपर थे पानी छिड़क दो
0: थोड़ थोड़ फुहारों
2: थोड़ थोड़ा
0: से
2: फुहारा छिड़कना है वो एक दिन में गर्मी काट दोगे दूसरा दिन और छिड़क दो दूसरा दिन और गर्मी काट देगो
0: बिल्कुल
2: तीसरा दिन और छिड़क दो
1: हाँ
2: फिर
1: इन
2: भी वो
1: तरीके
2: टेम्परेचर
1: से
2: जिगो है नहीं वो नीचा आ जैसी वो ठंडो हो जैसी
1: इन तरीके से अपन बिन ठंडो कर सका बिग बाद
2: हाँ
1: में 5-6 दिन बाद में गोबर और कचरे को जी को ढेर हुए ना बिग मा हाथ गाल के देख लिया अपन जे गर्मी बन पूरी तरह छोड़ दिया तो वो सब उपयुक्त समय हुए केचुआ गालन को बिग मा। लेकिन केचुआ नवीन जी कट्ठे मिले
2: एक केंचुआ तो देखो बाजार में भी देखो मिल रहा नहीं है कोई आपनों साथी कर रहे हो मान लो
1: बिया कृषि विकास केंद्र पर
2: हाँ
1: भी मिल
2: कृषि
1: जाए।
2: विज्ञान केंद्र में मिल रहा है हाँ
1: अब बिंगा बाद में जिको बेटा अपनो तैयार हो रहा है बिंगमा जरूरत के हिसाब में पानी छिड़कबो करे बिंगमा और बिना गिल्लो रखे ऊपर से बोरी ढक दे टाट वाली बोरिया हुआ नहीं
2: हाँ
1: बिना ढक दे ताकि वह लंबे समय तक जी पानी छिड़कबो करे
2: बस वो
1: ना
2: नमी बनी
1: तो
2: रहे
1: वह नमी बनी रहे गोबर सूखनो नहीं चाहिए।
2: हाँ
1: एर बिंगमा जिया केचुआ आपको वो खाई रखे गो और अपशिष्ट काटे रखे गो तो बाबियां बिया तैयार हो जिसी एर कोई महीने को समय ओ लेवे बतावे
0: अच्छा 1 महीने को
1: हाँ कह 30-35 दिन लगे एर जिया चाह पत्ती हुए ना बी हिसाब की भुरभुरी जी की है वह खाद तैयार कर दिया और बिंगे सारे इन तरीके को नयो बेड बना दिया आप जी हिसाब को खाडो वो बनाए हुए और बिना बिंगे सागे जोड़ दिया चाहे पाइपों जोड़ दिया चाहे बिना कोई खाली काट के जोड़ दिया तो आप ही आप कैंचो जी को है सोरम से बिना तो खाद बना के तैयार कर गए आप ही बिन दूसरे खड्डे के माँ
2: चले
1: केचो
2: जाए
1: उड़ जाए वो
2: वो
1: जनगणी खेचल भी किसान की होवे
2: हाँ
1: को नहीं। और बिंगे बाद में जी की तैयार हुई डी खाद है बिंचो खितरिया छान लेवे और किसान की जी की आमदनी की आप बात करा तो नवीन भाई मेरे तो सुनने में आयो है कि बजारा गा जी की घरा गा लोग क्यारिया लगा रखी है कोई सब्जी लगावे कोई और करे तो बटे 17-17 रुपये किलो आ खाद भी कह
2: अच्छा
1: बिना बाजार में लिया भी बेच के यार किसानी में
2: हाँ
1: आपके जबरत है
2: आपके बर तो
1: हाँ तो भी
2: नहीं
1: बहुत बढ़िया है जब आमदनी को जो आप इन्हें बढ़ाना चाहवा तो आस पास हम गोबर ले आगे और किसान जी को है आपकी किसानी के सागे सागे इन काम ने एक तैयार कर लिया वो एक अंग्रेजी में बात करें तो स्मॉल स्केल फैक्ट्री हो जाए
2: देखा अंग्रेजी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तैयार करने की भाई
0: अच्छा
1: लघु उद्योग जी को है ना
2: हाँ
1: आप
2: अच्छा
1: बात करा
2: उद्योग की बात करो नहीं तो उद्योग में सरकार भी सहयोग दे इनमें मिले सब्सिडी
1: ठीक है
2: वर्मी कंपोस्ट में
0: बिल्कुल
2: ठीक है नहीं?

0: 50,000 रुपया तक अनुदान में मिला पाने, ठीक है 50,000 रुपया तक अनुदान में मिल जाए कई बार। अरे लेकिन बनानो पड़े जी, मान लो पक्की यूनिट बनानी हुआ थाने, ठीक है पक्की बना और कच्ची बनाए, दो तरह की बनाए,
1: कच्चो सीधो दरडो जे,
0: ठीक है
1: सीधो दरडो भी उसके, और जे आप पक्की बनावा तो बिना 5 इंची बींद खींच गए और आप पक्को बेड भी तैयार कर सका। तो बिंग मापन ना तो मैनिये की जरूरत पड़ेगी ना और की जरूरत पड़ेगी, और ये तरीके से
0: पक्की अगर बनानी हो नहीं तो पक्की को जी को आकार हुआ वो लगभग मानो थे 30 फुट लंबो, ठीक है 8 फुट चौड़ो और 2.5 फुट गहरो,
1: ठीक है
0: आप पक्की यूनिट बनाए बे में के सरकार लगभग लागत की जगह 50% अमाउंट है नहीं आधो खर्चो
2: वो मिल जाए
0: ई मित्र में आप जावांगा नहीं बढ़ जाएगा अप्लाई कर सका।
1: अब आप लोग कार्यक्रम सुन गए, कोई किसान भाई तैयार भी हो जाए तो बिना मैं आप बता दें कि कई सावधानियां भी है जिके अपन रखनी जरूरी है।
0: बताओ
1: इसो बेड जिके भी जिगह पर आप बनावा बी जगह पर एक तो पानी को भाव नहीं होना चाहिए, पानी खड़े नहीं रहना चाहिए, पानी को भाव नहीं होना चाहिए, पानी निकासी को सही प्रबंध बैठा होना चाहिए। भाई कोई मे है कोई छंटा है, अब जी मौसम चलने ला रही है तो बी समय नुकसान भी हो सकता है। गोबर के साथ 10% ज्यादा माटी कचरे में कंकर पत्थर यह चीज नहीं होनी चाहिए, आप विशेष तौर से शुरू में ध्यान कर लें।
2: बिल्कुल
1: बैठ गए गोबर के कचरे में आग या धतूरो गपत्ता ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जो आप गाल दें कई बार आप देखा कि भाई अब अपन तो वो खरपतवार गालनी है या जी का खेती का अपशिष्ट है वह गालना है तो बिंग में आप आख ने धतूरे ने अन रड़ा दें तो जहरीला हुआ है अंक जो
0: तो नीम नीम गिर सके
1: नीम तो खारो है लेकिन वो बिया जी को नीम तो बिया ही नवीन भाई आयुर्वेदिक पौधो है
0: अच्छा
1: वो नुकसान कौन करे
2: नुकसान को
1: इंगी भी जी की पीली हड़ी पत्तियां पड़ जाए ना वे आप गाल सका तो वह तो बहुत ही बढ़िया बिया ही सीधी नीम की पत्तियां जो आप गाला तो वह भी दिमक को जी को प्रकोप हुआ है ना भूमि के अंदर भूमि जनित जी को रोग लागे दिमक करो इन नीम की पत्ती ही खत्म करे। नीम को अपन जो कोई बाजार में लिया रसायन भी रेड़ा नहीं कटे न कटे जो आप भी सारो पढ़ांगा तो भी मैं कटे न कटे नीम बिना यह चीजा बने भी कोई
2: बात तो सही जानकारी थे बहुत ही बढ़िया। नवीन भाई एक बात की मैं थाने पूछना चाहूंगी थाने के जिसका केंचुआ पाई मैं ला के रखा धीरे धीरे मैं वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता जावे और भी बाद में अपन जैसे बताइए कि दूसरा गड्ढो भी करना तैयार करके इन आप लगातार भी कर सका तो सवाल हुआ कि भाई जिसका केंचुआ है वे बढ़ेगा कटेगा तो हम कुछ मरे
0: नहीं नहीं
1: वे
0: बढ़ेगा
1: वे
0: बढ़ते जाएगा हाँ गलती भी के है आप नमी नहीं बनाए रखी मान लो है क्या ज्यादा नमी बन गई मान लो और धूप के संपर्क में आ गयो गर्मी बढ़ गई ई स्थिति में ही केंचुआ मरेगा नहीं तो केंचुआ जल्दी से मरे भी
1: गोबर है बिंग सागे जी आप खाद ने तैयार करा तो एक लघु उद्योग काम हो जाए। नवीन भाई मैं कू किसानी के बराबर आमदनी आप वर्मी कंपोस्ट बना के कर सका
0: चोखी है
2: तो
0: गीत तो अब सुन लेना
1: चाहिए
0: बढ़िया बढ़िया गीत सुनाऊं था ले लो।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जोर को सुने
3: क्या लगे गानो
2: बिल्कुल है? बहुत बढ़िया।
4: रब पानी को गीत तो नवीन भाई सुना था ना, और याद तो लगे क्यों कैसे किया दोरा की धरती है नी, चारा काने आसमान में बादल छाएड़ा अरे राता राता दोरिया अर चारा काने बारिश देखी होने लग रही है। तो राम जी राज्य ऐसा
3: राम राज्य देखो चौकी आने लगी बारिश आपने चारों तरफ आप देखा तो अभी मेज को ठीक होने लग रही है और अपना आस पास घर जम बात करें तो थोड़ो ज्यादा ही होने लग रही है।
2: बिरका के साथ कीड़ा घंटा भी आसी साहब किसानी के वास्ते तो थोड़ा गुणो भी सावचेत भी रहना पड़ सी क्योंकि कीड़ा घंटा आवागार अब के है कि जिया सपरे को समय अब कीड़ा घंटा उपजेगा जन सपरे भी हो सी और सपरे में नवीन भाई आए कीड़े ही आपा सुना के जिका किसान भाई है सुना भी हाँ एर अखबारा में पढ़ा
4: के हाँ देखा भी हाँ कल नवीन भाई बे मैं जावा आज ना कोई सपरे करन लाग रहा खेत के माँ जनबे भुरु भाई किए के हाथ के माँ पाइप ले रखी और वो जोर को चले फुआरो ट्रैक्टर नए बंगे मूंग ऊपर की डाटो मारे डो कोई की लगाए डो नाक सीधो ही सांस बह ले वेर भुरु भाई मन नवीन भाई कहियो
2: आई बात करा
3: आजकल नयो चले वो ट्रैक्टर जिको चले नी ई में के प्रेशर हवा फुल
4: फुल
3: वो चला जना कोई मतलब गाड़ी धोना मोटर है नी भी तो तेज चले
2: पर सावधान तो जरूरी है।
3: तो वो के ना तो कोई मास्क लगा रखे हो ना कोई आपका हाथ ढक रखे ना पग ढक रखे ना सिर ढक रखे हो है। अब जिको वो धुआं उड़े बेंगो वो आपके चारों तरफ करने ला रहे बिन लगा के मैं तो कई चीज को बनाने में रखी को नहीं हो सी
2: टाबर बुद्धि है तो
3: वो जिको जहर है नी वो थोड़ी मात्रा में भी अपने अंदर जावे नहीं तो अपन पता तो लागे को नहीं नुकसान बहुत करे
4: नुकसान।
2: तो आपने किसान भाई ने बताओ भी के तरीके से आप सावधानी लिया का यानी स्प्रे की बोतल खरीद के लिया वहाँ बी शू ले गए और आप बोतल ने खाली कर गए के तरीके से भी ने खत्म करनी है।
3: पहला तो खरीद के लेगा वहाँ नहीं बिंग ऊपर लेबल के ऊपर बन रहा हुआ चोकोर रंगा निशान
2: ठीक है
3: समझो और बांगा रंग हुआ अलग अलग
4: अच्छा
3: रंग थार का लिख रहा है को नहीं के लाल रंग हुआ है
2: ठीक है
3: लाल रंग भी देखो खतरा को निशान हुआ है ठीक है नी लाल रंग मतलब वो जिको केमिकल है इन्हें था ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना
4: बहुत ज्यादा
3: ध्यान रखना मतलब क्या है वो थारे स्पर्श में भी नहीं आना चाहिए
2: यानी दो तीन तरह का जगह दूर रखा ताले के मार रखा भी के तरीके से बिना रखनो है वो बताओ।
3: देखो बिना सारों पहला तो रखो दूर टावरंग ऊंची जगह रख दो बोतल जिकी है बेगो ढक्कन है बिना टाइट बंद करके रखो ठीक है क्योंकि अगर हाथ के लाग गयो तो हाथ में समस्या आंखें में लाग गयो तो
4: आंखें
3: में समस्या
2: यार कई तो ऐसा अपना बोला भाई जी का मुंह खोल ले ढक्कन
4: ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए भूल के भी
2: बे लाल पीलो की गोंद देखे बे तो मुंह ढक्कन खोल ले दे कई देर ताबे ना आवे नहीं जन के दे मरोड़ी के मुंह ही जड़ के देने
4: हाँ, तो आ बहुत मतलब गलत चीज है इन मुंह कदी हाथों मुंह जे नवीन भाई बताओ है तो इन सफर से दूर रखनी चाहिए। नवीन भाई ए जकी स्प्रे वाली बोतल डी है जकी ले रहा हूं नहीं खेत में हूं ले करूं कई बार स्प्रे करण खातर तो भी पर एक बात तो लिखड़ी हुई है के बच्चों की पहुंच से दूर रखें
3: बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अरे आपा जकी खांसी की दवाई लेनी बीप भी लिखड़ो है पर वो तो जहर है अब जहर में बताया

0: रंग हुए हैं, एक तो क्यों लाल,
1: लाल
0: को मतलब सम ज्यादा जहरीलो है, सबसे ज्यादा सावधानी थाना बरतनी है। पीलो, पीलो जो है वो भी घणो जहरीलो है, पर लाल जितो तो कोनो,
1: ठीक है,
0: पछावे नीलो, नीलो अगर चोकटो बनायडो है तो भी मतलब थोड़ो कम जहरीलो है, और हरियो मतलब काफी सुरक्षित है। तो एक थे आ चीज भी ध्यान रखो, जब थे खरीदो नहीं तो पहला तो लेबल भी देख लो, अगर थारे हरड़ता हूँ काम चाल जाए तो हरियो लेगा, लाल थाने कद खरीदनो है, जब थाने लगे कि भाई अब तो स्थिति जी की है बा, हाँ तू बारा है, अब कंट्रोल अगर नहीं करो तो अपनी फसल ना ज्यादा नुकसान हो, ठीक है नहीं, तो ये सावधानी विशेष सावधानी आएगी।
2: बिंगे बाद में,
0: बिंगे बाद में आप ऊंचो रखनो सारू, पहला तो थाने में बताई,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अरे टाइट रखनो मैंने बंद कर गए, अब थे जब मैंने उपयोग में लेगा तो सारू पहला तो जी भूरू भाई जी की होगी भाई ढक्कन जो मुंडा को नहीं खोलो,
1: हाँ को नहीं
0: खोलो, ठीक है, हाथ तो खोलो, हाथ को पुरावा ग्लव्स, चश्मो लगाओ, ठीक है, चश्मो किसो रंगीन नहीं, पारदर्शी पारदर्शी को चश्मो लगा लो, ठीक है, और गमछो बांध लो मुंह के ऊपर, और खासकर नाक मास्क ले लो, मास्क अगर थे नहीं खरीद को गमछो तो बांध इसको, ठीक है, कमीज की है वह पूरी महंगी पहननी है, थारे शरीर में भी वो लागड़ो नहीं,
1: अपनी चामड़ी के नहीं लगे,
0: जूता पहन के रखो, ठीक है, पैंट जिगे पूरी होनी चाहिए थारी, कि थारी स्किन है जिगी चमड़ी बिंग ऊपर भी जहर लागू नहीं चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, अब थे जिगी मात्रा जिगी डाल रहे हो, बा थारी अनुशंसित मात्रा नहीं चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: ज्यादा डालोगा
1: तो
0: बा कोई ना तो बा कोई काम गी, रुपया लगे जिगा एक्स्ट्रा, और थारा अगर लाग गई तो भी तो ज्यादा नुकसान करेगी,
1: बिल्कुल,
0: तेज धूप है, ठीक है, बारिश होने लग रही है या फिर तेज हवा चल रही है, तीन स्थितियां में थाने स्प्रे
1: कौन करनी,
0: ठीक है,
2: हवा के विपरीत कौन करनी,
0: एक के करे लोग इन्हें चाय पीने लग रहे हैं, इन्हें वो मिलान लग रहे हैं, वो भी गलत है, कोई भी तो खाता पीते टाइम है नहीं, जिसको कीटनाशक है बिना हाथ ना लगाओ,
2: खाली पेट करो बिना,
0: खाली पेट करो बिना, कुछ नाश्तो करो, ठीक है नहीं, और जी ही थे डब्बा ने डाल दियो कर लियो सारो काम, बिना बाद में आया बाद में हाथ चेहरो आंखिया और कपड़ा कपड़ा नारा ये धोके रखना,
2: ठीक है,
0: थाना नाड़ो है, अब जिकी बोतल आई है बाना यहाँ को निकलो बा मैं पानी गाल के फ्रीज
2: में, तो बताऊं था ना मैं एक खेत में गेड़ो जी को बन मने बा सप्रेल डब्बो के हुए बिग मां पानी लिया के दियो पीने वास्ते, मैं क्यों ओ मूर्ख आदमी हो के कर रहा क्या था,
0: देखो
2: जन के कह के मैं तो बर्त लिया गए
0: बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। बाद में रही बात थाने अगर गलती से भी थाने लगे की विषाक्तता का कोई लक्षण थाने में आ गया,
2: कोई उबाकानी कोई
0: तो यहाँ को नहीं करना की यार देखांगा कोई पानी पी लिया और कर लिया नहीं, थे पहले सीधा जाओ
1: डॉक्टर का तुरंत ही जानो चाहिए,
0: तो ये ध्यान अपन रखना है, और ये बात सारा किसान भाइयों ने ध्यान होनी चाहिए कि भाई अगर आप सावधानी नहीं रखांगा तो आपने नुकसान है, टाबरा ने भी नुकसान है, कई बार देखा कि गलतियों कीटनाशक पियो क्यों, अब गलती हो जाए क्यों अगर थे ध्यान रखो तो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: छोटी छोटी बातों को जो आप ध्यान में रखा तो कोई अप्रिय घटना घटित को नहीं हुआ है। नवीन जी तो आपने सब गल मारबो कर सी
1: सुना नहीं, नहीं, एक है। हमारे गीत वाली बात भी ध्यान में है,
0: हाँ तो सुनाओ, गीत सुना पहली ओ लो गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वैसा देखो गीत थाने की तो फूटो सुनाए हमें हैं
3: बिल्कुल।
2: तो जुलाई को महीनो जी को है लगभग समाप्त होना रहा है सिंहपाल भाई जी, तो जी का फल वृक्ष लगा रखे है कोई उद्यान का कोई काम करे सब्जी वगैरह लगा रखी है बांगा वास्ते ई महीना में के काम हुए
3: बताओ।
2: बिंग पर बात करा मान लो तो कोई मान लो अगर नयो बाग लगाना चाहे

0: तो वो खड्डा जी का खोदना है, वो सही समय है ये लगता जी का खड्डा बाना खोदो ताकि वहां पानी भी जावे, वहां कोई खाद खूद देगी नहीं है, सड़ी गली
1: बिल्कुल
0: सिंगल सुपर फास्फेट हो गयो क्यूनाल फोस वगैरह मिला गए ये थे खड्डा में घेर दो ताकि वे खड्डा में जिगी निचतई जिगी है खाद जिगी है रम जे
1: बिल्कुल। देखो जुलाई को महीनो है बरसात को जो समय चलन लाग रही है तो ई महीने में जिगी रेडी खाद है गड्ढा है जिका बे ज्यादा काम करे।
0: मासी है नींबू को मान लो फल वृक्ष लगा रखे है तो कैंकर नाम की एक बीमारी हुआ है दाग से पड़ जाए बुरा बुरा
1: पत्ता पर
0: नहीं फल पे
1: फल के ऊपर
0: सिट्रस कैंकर बोल रहे हैं।
1: अच्छा
0: बिंगो जी को बोर्डो मिक्सचर वगैरह लगाना है वो टेम जी को है वो चोको है
1: बढ़िया
0: है टेम लगा दियो ठीक है। और थाने माल्टो नींबू बेर आंवला आम अमरूद अनार आम ऐसे कोई भी चीज लगानी है तो वो टेम जी को है वो सही है। इन अलावा बात करें मान लो फूल गोभी की, फूल गोभी की अगेती जी की फसल है बी वास्ते थाना ये वक्त पौध तैयार करनी है 600 से 700 ग्राम बीज जी को बोलियो और पर्याप्त नमी का सागे जी की क्यारी है बना लियो ज्यादा पानी नहीं ठहरना चाहिए और सड़ी गली गोबर की खाद लिया नत्रजन फास्फोरस पोटास ये सब चीजें थे मिला लो और कतारू कतार की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है और ये वक्त फूल गोभी की जिसकी तैयार है वे
1: कर लेनी चाहिए
0: चालू कर देनी चाहिए
1: बिल्कुल।
0: यहीं पर बात करें मान लो मूली की कोई अगेती किसान बो रहे है तो 1 हेक्टेयर में 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता थाना मिलेगी
1: मूली की
0: मूली वास्ते ठीक है। वो टाइम क्या मतलब शुरू होने ला रहे समझ गया
1: बिल्कुल।
0: भिंडी है भिंडी तो आजकल आप देखा तो 12 महीने भी तो चल
1: रही है तो चल रही है भिंडी तो
0: पर फिर भी वो टाइम जो है भिंडी वास्ते
1: बढ़िया
0: है ठीक है। कद्दू वर्गीय आप सब्जियां की बात करें कोई तरबूज है खरबूजो है खीरो है ककड़ी है लौकी है करेला है आंग बीज की उन्नत किस्म है बेथे बो सको
1: बिल्कुल।
0: सागे टमाटर की बात करें तो टमाटर की पौध की रोपाई जी की है बात है कर सको तो ओ मीनो जी को है वो कृषि कार्यांग है। बिंग अलावा पर बात करें श्रीपाल जी तो जी की फसल है बांगी बोई भी चालन लाग रही है
1: बिल्कुल बात तो थारी सच्ची है अच्छी भी है सुनने भी जी करे है पर अब की है कि देखो मैं तो जी करे कि थारे सागे बात कर ही रखा पर खेती का काम धंधा भी करना है अपनो जो को समय है वो भी चौपाल को
2: बाजार भाव है कोई
1: हाँ बाजार भाव थे कहो तो गंगानगर मंडी का तो गंगानगर मंडी के माँ आज सरसों का भाव रहा 7,666 रुपया ले गए 7,940 रुपया कणक का भाव रहा 2,461 रुपया ले गए 2,798 रुपया ग्वार भी क्यों 5,750 रुपया एर जोई का भाव रहा 3,685 रुपयों ले गए 3,735 रुपया
2: सुरतगढ़ मंडी का मैं बता दूं था ना आज कणक बिकी है 2,600 रुपया नीचे में और ऊपर में 2,606 रुपया चीनो बिके 5,526 रुपया सरसों का भाव रहे 7,429 रुपया और ग्वार का भाव रहे 5,641 रुपया मूंग नीचे में रही है 5,500 रुपया और ऊपर में 6,650 रुपया
1: तो बढ़िया
0: भाव बता दिया बाता बता दी है अब चला
2: चालो सा
0: दिया
2: तो राम राम सा
0: राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 7:45 हुए हैं। आइए सुने भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नील कमल फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी आशा भोंसले की। आइए सुने फिल्म ईश्वर एक रूप अनेक का ये भक्ति गीत हरिहरन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में।

0: गीत गाता चले। इस फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना आरती मुखर्जी, जसपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।
1: पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए

कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नज़ारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने 1 ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी

जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तिन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही तीन बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इस

बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक

0: कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज श्रीपाल शर्मा का श्रोताओं गीत के मुखड़े से आज की फिल्म का नाम तो आप पहचान ही गए होंगे। आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले के कुछ गीत। श्रोताओं ये फिल्म सन 1965 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लेखक थे ब्रज कात्याल और निर्देशक थे सूरज प्रकाश।

गीत लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज देने वाले कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी, नंदा, सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर। इस फिल्म में लगभग 9 गीत थे और सभी गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए।

So the लाइमलाइट प्रोड्यूसर कंपनी के बैनर तले बनी फिल्म जब जब फूल खिले। इस फिल्म में

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको फिल्म जब जब फूल खिले के गीत सुनवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में भाग लेने वाले कलाकार थे, अपना अभिनय दिखाने वाले आर्टिस्ट थे शशि कपूर, जिन्होंने राजा यानी राजकुमार की भूमिका निभाई थी, और नंदा ने रीता खन्ना की भूमिका निभाई थी। कमल कपूर ने राजा बहादुर की और शमी ने इसके साथ साथ जतिन खन्ना, टुनटुन और श्याम ने इस फिल्म में अपना अभिनय दिखाया था। श्रोतो, ब्रिज का चयन के लिए की पटकथा को उस समय अच्छे अच्छे फिल्म निर्माताओं ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन निर्देशक सूरज प्रकाश को यह एक सुंदर कहानी लगी।

और इसे स्वीकार कर लिया। आगे चलकर यह उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी और उनकी पहली रंगीन फिल्म थी। राजा की भूमिका के लिए शशि कपूर ने इस फिल्म में जो अपना अभिनय दिखाया था, उन्होंने बहुत बड़ी रिहर्सल पहले की थी। जम्मू कश्मीर में नाव चलाने वाले नाविकों के साथ कई दिनों तक उन्होंने काम किया, उनकी जीवन शैली को समझे और कई बार उनके साथ रहते थे, भोजन करते थे। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन जिसमें राजा रीता को चलती ट्रेन में खींच लेता है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर फिल्माया गया। निर्देशक सूरज प्रकाश ने नंदा को ट्रेन में खींचने के तरीके और सही समय के बारे में शशि कपूर को स्पष्ट निर्देश दिए थे। शशि कपूर ने भी उन पूरे निर्देशों का सटीकता से पालन किया कि जब उन्होंने नंदा को ट्रेन से खींचा तब प्लेटफार्म समाप्त होने में केवल कुछ ही फीट की दूरी बची थी। सूरज प्रकाश के अनुसार यह दृश्य इतना रोमांचक था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं नंदा के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन शशि कपूर ने बहुत ही शालीनता और अनुभव के साथ इस सीन को निभाया था।

श्रोताओं, इस फिल्म में लगभग 9 से 10 गीत थे, जिसमें 3 गीत, या यूं कहें कि परदेशियों से ना अखियां मिलाना, इस गीत को 3 पार्ट में गाया गया था। एक उदासी के तौर पे मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया, दूसरा खुशी के माहौल में इस गीत को मोहम्मद रफ़ी ने गाया, और एक गीत लता मंगेशकर ने गाया था। इन तीनों गीतों की अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक की रही।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, फिल्म जब जब फूल खिले का सबसे लंबी अवधि का जो गीत था वो मोहम्मद रफ़ी और नंदा ने गाया था, एक था गुल और एक थी बुलबुल। हालांकि समय अभाव के कारण हम आपको ये गीत नहीं सुनवा सके। बहरहाल, इसी के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की श्रीपाल को इजाज़त दीजिए। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट प्रशांत कुमार। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अगले 15 मिनट में हम आपको रूबरू कराएंगे दिन भर की तमाम खेल खबरों से और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है खेलों की दुनिया में खास। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खेल सुर्खियों पर।
1: भारत ने दूसरे 2020 मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली। सिद्धार्थ,
0: राष्ट्रमंडल खेलों में झंडू कुमार ने हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पद दिलाया।
1: उधर मुक्केबाज जादूमणि ने राष्ट्रमंडल खेलों में किया दमदार आगाज, राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई।
0: रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में टोंगा को हराया। पुरुष सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल का मुकाबला मलेशियाई खिलाड़ी से जारी।
1: उधर विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में अनाहत सिंह ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, बनाई फाइनल में जगह।
0: और यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ओमान और पाकिस्तान को शिकस्त दी।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को हराकर श्रृंखला में बढ़त बना ली है। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ईशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिद्धार्थ,
0: बिल्कुल, और अगर हम इस पर नजर डालें तो टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए। भारत से शानदार प्रदर्शन करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 44 गेंद पर 81 रन की धमाकेदार पारी खेली,
1: और उनका बखूबी साथ दिया है उपकप्तान तिलक वर्मा ने, जिसने 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 29 गेंद पर नाबाद 60 रन बनाए। इस पारी के दौरान तिलक ने 3 छक्के और 5 चौके भी लगाए। सिद्धार्थ,
0: कप्तान शिया सैयद ने 25, युवा वैभव सूर्यवंशी ने 20 रन की पारी खेली। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने 8, रिंकी सिंह ने 12 और शिवम दुबे ने नाबाद 6 रन बनाए।
1: अगर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बात की जाए तो ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड अंगारावा, ब्रेड इवेंस, न्यूमैन न्यानहोरी और ब्रायन बेनेट ने 1-1 विकेट अपने नाम कर लिए।

0: और 220 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत निराशाजनक रही और उसने 50 रन के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए। ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन, वहीं रायन बर्ल ने 20 रन की पारी खेली। फिलहाल 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। और अगर हम एक नज़र भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर अगर हम डालें तो क्या कुछ है इनका प्रदर्शन।
1: सिद्धार्थ, अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी तो करते ही हैं, वो
0: जी प्रशांत
1: शीर्ष बल्लेबाज हैं T20 में, लेकिन आज उन्होंने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया। 3 ओवर में 17 रन देकर उन्होंने 3 विकेट झटके हैं। साथ ही साथ यश ठाकुर, जिनको आज इस मौका मिला है इस मुकाबले, उन्होंने 2 विकेट लिया है। प्रिंस यादव ने भी लगातार IPL से अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे सिद्धार्थ, और आज के मुकाबले में भी उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं रवि बिश्नोई की बात कर ले, शिवम दुबे की बात कर ले, तिलक वर्मा की बात कर ले, सबने एक एक विकेट अपने झोली में डाले।
0: बिल्कुल, और यहां पर खास बात करनी होगी प्रशांत अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने इकोनॉमी जो है 6 की उनकी रही और 17 रन देकर उन्होंने 2 ओवर और 5 गेंदों में 3 विकेट हासिल किए। तो अभिषेक शर्मा की जो शानदार गेंदबाजी थी उसने भी भारत की जीत में एक अहम भूमिका निभाई है।
1: और इसी के दम पे सिद्धार्थ, जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 13 गेंद शेष रहते ही 129 रन पर सिमट गई, और जिसके कारण भारत को 3 मैचों के श्रृंखला में 2-0 की बढ़त मिल गई है।
0: बिल्कुल, और भारत का जो शानदार प्रदर्शन था, जिस तरह से पहले मैच में भारत ने प्रदर्शन किया, फिर दूसरे मैच में, तो ये जो लगातार कंसेक्यूटिव जीत है इसने खिलाड़ियों के मनोबल को काफी बढ़ा दिया है, और एक बार फिर भारतीय टीम जो है वो अपने पूरे दमखम के साथ तैयार है और अगले मैच के लिए। तो ऐसा अब सबकी नजर ये है, एक्सपेक्टेशन प्रशांत ये है कि भारतीय टीम कहीं क्लीन स्वीप ना कर दे जिम्बाब्वे को, तो उस पर पूरी नजर है खिलाड़ियों की।
1: बिल्कुल, जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली है, पहले आयरलैंड से वो हार गए, फिर उसके बाद इंग्लैंड से हार मिली है, लेकिन उसके बाद इस सीरीज में भारत बैक ऑन ट्रैक दिखती नजर आ रही है। और आपने जैसा बताया कि उम्मीद की जाए कि भारत अगला मुकाबला जीत कर क्लीन स्वीप करेगी और एक बार फिर अपना परचम लहराएगी।
0: बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय फैंस हैं उनका भी, उनकी भी नजर तीसरे मुकाबले पर रहेगी, और खिलाड़ियों के भी जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे मैच में किस तरह से जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम दिखाते हैं, वो अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। और अगर हम देखें प्रशांत, तो जीत जो भारत की हो रही है वो बड़े अंतर से हो रही है, मतलब इस तरह से जो जीत हासिल हो रही है, क्योंकि पिछला जो प्रदर्शन था पीछे के, जैसा कि अभी आपने बताया कि भारत का पिछले दिनों जो प्रदर्शन रहा है वो उतना अच्छा नहीं था, तो कहीं ना कहीं भारत ने एक तरीके से कमबैक किया है और बहुत ही अटैकिंग जो खेल होता है उसको दिखाने की कोशिश करी है।
1: बिल्कुल, और जैसे हम क्रिकेट में बात भी करते हैं, तीनों प्रारूप जो है हमारे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया गेंदबाजी से। लगातार अभिषेक शर्मा ने आज 3 विकेट लिया, ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज, और क्षेत्र रक्षण में भी अच्छी हो रही है वापसी। तो लगातार जो इंग्लैंड में जो कमी रह गई थी, आयरलैंड में जो कमी रह गई थी, इस सीरीज में भारत दमखम के साथ वापसी की है और उम्मीद करेंगे कि तीसरा मुकाबले भी जीतेगी।
0: बिल्कुल, तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे खिलाड़ी इस श्रृंखला में क्लीन स्वीप करेंगे, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉमनवेल्थ गेम्स में झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। पैरा पावर लिफ्टर ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में कांस्य पदक देश के नाम किया, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडू को देश के लिए पहला पदक जीतने पर बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झंडू कुमार की ये उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और बरसों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है।
0: और इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी झंडू को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलोग्राम का जबरदस्त लिफ्ट करके भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पहला मेडल जीता। पूरे देश को उन पर गर्व है। झंडू कुमार ने अपनी इस जीत पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा।

0: हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज इन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
1: और प्रशांत झंडू की इस जीत पर हम और तुम और इसके साथ ही पूरा देश उनसे क्या कुछ कह रहा है।

0: और प्रशांत क्यों ना कहें कि क्या खेला रे शाबाश, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड पर झंडू का के नज़र डालें तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। उनकी घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी। एक समय पर उन्होंने ई रिक्शा चलाकर और सब्जी बेच कर घर का गुजारा किया था। इन संघर्षों के बावजूद झंडू ने पदक जीत कर देश के भावी खिलाड़ियों के लिए मिसाल कायम किया। क्या कुछ कहोगे प्रशांत?
1: बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और इस प्रतियोगिता में लगातार अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों से होता आ रहा है, लेकिन पहला पदक तो पहला ही पदक होता है। इस वर्ष भारत को पहला पदक दिलाना एक वर्चस्व स्थापित करने की तरह है।
0: बिल्कुल, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह मंडेनगमाम ने राष्ट्रमंडल खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। राउंड ऑफ 32 मुकाबले में जादूमणि ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में स्कॉटलैंड के एरन कलन को 5-0 से हराया। तो प्रशांत क्यों ना सुन लेते हैं की रिपोर्ट।
1: बिल्कुल,
2: ग्लासगो के SEC हॉल में खेले गए इस मुकाबले में जादूमणि शुरू से ही आखिर तक विपक्षी मुक्केबाज पर पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने तेज पंच, सटीक निशाने और मजबूत डिफेंस के दम पर अपने प्रतिद्वंदी को पूरे मैच में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी 5 जजों ने हर राउंड में जादूमणि को विजेता माना। घरेलू दर्शकों के समर्थन के बावजूद स्कॉटलैंड के एरन कलन भारतीय खिलाड़ी की गति और रणनीति के आगे बेबस नजर आए। भारतीय मुक्केबाज के एक के बाद एक पंचों का एरन कलन के पास कोई जवाब नहीं था। इसी जीत के साथ जादूमणि राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब 26 जुलाई को उनका मुकाबला पाकिस्तान के रहमान से होगा। जादूमणि अगर पाकिस्तानी मुक्केबाज के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं तो वह क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लेंगे। जादूमणि को भारत की ओर से पदक का बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है। जादूमणि की इस जीत से भारतीय बॉक्सिंग टीम ने प्रतियोगिता में मजबूत शुरुआत की है।
0: जी हाँ, जादूमणि ने अपना जो जादू दिखाया है प्रशांत, वो तो इस समय सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। और क्यों ना बोले, इतना शानदार प्रदर्शन जो किया है।
1: और सिद्धार्थ, उधर भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने आज स्कॉटिश इवेंट कैंपस में हुए कड़े मुकाबले में कनाडा के क्योमा अल हमदीह को हराकर पुरुषों के 60 किलोग्राम इवेंट की प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 26 साल के पूर्व कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स चैंपियन ने 4-1 से जीत हासिल की।
0: जी हाँ, सचिन सिवाच और क्योमा अल अहमदी के बीच हुए मुकाबले की शुरुआत बेहद रोचक रही। दोनों बाएं हाथ के मुक्केबाजों ने रिंग के बीच में एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। सचिन की तेज टाइमिंग और साफ कनेक्शन शुरुआती राउंड में अहम साबित हुआ। उन्हें थोड़ी बढ़त मिली क्योंकि 5 में से 3 जजों ने इसे 10-9 से उनके पक्ष में स्कोर किया। लेकिन फाइनल जिस तरह से आज हुआ और जिस तरह से उन्होंने 60 किलोग्राम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, उनको हम स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम का सलाम।
1: और बात लॉन बॉल्स की भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की भारतीय जोड़ी ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाते हुए महिला पेयर्स के सेक्शन बी में टोंगा को टाई ब्रेकर में 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। रूपा और पिंकी ने टोंगा के पेरिस बेकर और मिलिका नाथन के खिलाफ पहला सेट 5-2 से जीता था सिद्धार्थ।
0: क्या बात है, ये शानदार जो जोड़ी का प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इनका जो पूरा सफर रहा है काफी अच्छा रहा है। रूपर पिंकी दोनों ने 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला फोर टीम का वो हिस्सा थी, तो उनसे हम सभी को बेहद उम्मीद है। और दूसरी ओर पुरुष सिंगल्स के सेक्शन डी के मैच में भारत के शीर्ष लॉन बॉल्स खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल

0: का सामना मलेशिया के इज्जत शमीर से जारी है। फिलहाल वो 4-8 और 4-9 के स्कोर से पीछे चल रहे हैं।
1: बात अब स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। अनाज सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में आज रात उनका सामना मिस्र की रुकिया सलीम से होगा।
0: जी हाँ, और हम सब की नज़र आज रात उस मैच पर लगी होगी। और आपको बता दें कि अनाहत सिंह जोशाना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, और आज पूरे देश को फाइनल में उनकी जीत का इंतज़ार रहने वाला है। और इन्होंने जिस तरीके से हम ये देखें कि सेमीफाइनल मुकाबलों में बारब को 11-3, 8-11, 11-4 और 11-6 से जिस तरीके से हराया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है।
1: बात हॉकी पर भी कर लेते हैं सिद्धार्थ। मस्कट में FIH यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर्स पुरुष टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने मेजबान ओमान को 10-1 से हराने के बाद पाकिस्तान को 7-3 से शिकस्त दी। हालांकि महिला टीम को इसमें प्रतियोगिता में हार का सामना करना पड़ा।
0: और चलते चलते नजर डाल लेते हैं निशानेबाजी पर। हांगझोउ में भारत की सोनम उत्तर मस्कर ओलंपियन इला वेनिल वलारविन ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। और समय हमें अब अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। और प्रशांत, जिस तरह से आज का दिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहा, जिस तरफ एक तरफ क्रिकेट में हमने जो सफलता हासिल करी है वो अपने आप में बहुत उम्दा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है।
0: तो अब इसी के साथ हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के

0: ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर CJP के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय IT इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान

0: तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
1: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी

और कार्यकाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई कचलें। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: दोस्तों, विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंटवार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों, 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताजा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली

0: वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है, जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी।
1: चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है, जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को डीएनए राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक डीएनए में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
2: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
3: आज ही हरियाणा के जिंद से, जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
2: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
4: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है, और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है, जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है, जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
2: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
4: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके, जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो हैं ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन

0: तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही, साइड में ही, रेलवे स्टेशन के बगल में ही, वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है। और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया। और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलके वापस वो पानी बना गए। यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। IIT कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों हैं।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली, और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट हैं, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का, कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से नहीं बनते हैं। उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय कि ये जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्युमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
2: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी। कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है, और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
2: तो भविष्य में ये है कि

0: इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहाँ पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपियरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स, की कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जो की एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट, उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है, और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब 0 डे है, और फिर स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है, और फिर चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों, IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं।
2: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां की पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे 5 दिन में 2 बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है, बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती हैं, देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं, अटेम्प्ट्स हैं IVF के, वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा, एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर 4 मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है, ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
1: दोस्तों, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है, लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
3: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में।

0: सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें वो ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने, और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता है। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जिसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
0: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो है वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक एम स्ट्राइप ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो एम स्ट्राइप ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों, जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
2: देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि ये कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी, जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार हैं, फ्रुगल नवाचार हैं, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गाँव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए, और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
2: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तब वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि

0: तो स्किल बेस्ड, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही हैं बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा। मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा। सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के, तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हुआ, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मानसून की फुहारे लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

0: श्रोताओं, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी, जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं, बैरन रतिया कैसे आऊ।
2: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ ठुमरी कंपोज्ड इन राग मिश्र तिलक कामोद, सेट टू दीपचंदी ताल। बैरन रतिया कैसे आऊं।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: That was ठुमरी मिश्र तिलक कामोद। Now श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी, सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी, रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर।

0: This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Pune and broadcast came to you from Akashvani Delhi. Namaskar.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार.
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है. रात्रि के 11 बजे हैं. अब समाचार होंगे.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया. श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं. उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है. श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है. श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जाँच सीबीआई को सौंप दी. इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे. उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की.
4: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे.
3: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है. नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी.
5: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम.
3: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी. सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी. ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है. इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे. प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है. संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है. उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे. ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा.

हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: as Prime Minister and parliamentary leaders addressed the India-Romania Business Forum and interacted with members of the Indian community. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 90 runs in the second T20 international of the three-match series in Harare. With this win, the men in blue have registered an unassailable 2-0 lead in the series. This also marks the first series win under the captaincy of new T20 skipper Shreyas Iyer. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।